बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002 बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता। कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही, तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
0: Don't touch that dial. After a short break and a few messages from our sponsors, stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा. ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी.

0: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी अनयूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000 416-284-7000।
0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर It deserves.
3: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
0: Don't touch that dial. After a short break and a few messages from our sponsors, stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
2: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
3: Another Don clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
7: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
6: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली। ओहो

0: आप सुन रहे हैं CMR at 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीक.

0: कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड एट 3852 फिंच एवेन्यू, ईस्टर्न स्कारब्रो, यूनिट GO3। आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ It deserves.
5: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
6: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000. Aap sun rahe CMR at 9. Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट एशिया गोल्डिंग.com।

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
4: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
5: Listen to us around the universe. www.cmart.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम. जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं. सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी. विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 416-746-3795. 416-746-3795. एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत. विजिट asiagolding.com.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sills and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers. Reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
3: Oh ho! Toronto, get ready!

0: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफरोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे
4: गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स और कॉल 4167463795 4167463795 एशिया गोल्ड हर चमक में भरोसा हर खरीद में बचत विजिट asiagolding.com
5: Listen to us around the universe www.cmr.fm

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी अनयूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट्स 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 416-746-3795 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीदने बचत। विजिट asiagolding.com।
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Oh ho!

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm. इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
3: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा गीत है जुनून के की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क। बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर्स विल हिट 30 टुडे एंड ऑलमोस्ट सेम एज यस्टरडे, एंड रेन लाइकली फ्राइडे ओवरनाइट। सनसेट होगा 8:55 पर, 8:55 PM। लॉन्ग लॉन्ग डेज, ब्यूटिफुल टेम्परेचर, सनी वेदर। आज 30 है, टुमारो इनफैक्ट टेम्परेचर्स विल हिट अबाउट 31, सैटरडे 25 एंड देन अगेन 26 ऑन संडे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वेदर है, इसे इंजॉय कर लीजिए। And it is June 4th, Thursday, and we are very close to the weekend. So, weekend जब close होता है तो बंदा वैसे ही थोड़ा सा ठीक ठाक mood में हो जाता है as compared to the Mondays and Tuesdays. And there's a lot of excitement happening next week, जहाँ पर FIFA की शुरुआत भी हो रही है. So, उसको लेकर भी काफ़ी एक buzz सा है, एक महसूस हो रहा है कि there's something happening in Toronto, close to where we all are. 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। 12:15 की हेडलाइंस अपनी बिल्कुल तैयार है। द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सुल्तान जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से, जिन्होंने अप्लायंस, टीवी एंड लॉन्ड्री पर भारी सेल लगाई हुई है। आपने पहुंचना है 801 बुवेड ड्राइव वेस्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ बुवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन एंड टेक एडवांटेज ऑफ दी सुपर सुपर सुपर डील्स। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, 30+ लोकेशन से आपको करते हैं सर्व। एंड एक तरफ जो है वैभव सूर्यवंशी की बड़ी तारीफ हुई है आईपीएल के बाद, जिस तरह से उन्होंने 700+ रन्स बनाए आईपीएल में। दूसरी तरफ जो है, जिस बंदे ने 3 महीने पहले, ऐसे वक्त बदलता है, सिर्फ 3 महीने लगे हैं, सूर्य कुमार यादव जो है T20 के कप्तान थे, जिसके अंडर T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने हासिल किया, and after just about 3 months he is not going to be the T20 captain anymore. Shreyas Iyer ko T20 captain banaya jayega team India ke liye, and not shocking, unfortunately jis tarah ki unki performance IPL mein bhi rahi hai aur ye pichle 3 mahine mein bat ke sath balla jo unka nahi chala hai, even right after the IPL jo Mumbai league ho raha hai usme bhi he is unable to perform. So all the people that love Surya Kumar Yadav will be very disappointed ki he is not going to be the captain anymore. वक्त इतने जल्दी जो है किसी का भी बदल जाता है। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे बहुत जल्द, 905-206-1008, एंड हर सैटरडे आफ्टरनून फ्री सेमिनार होता है 12:30 से 3:30। आप अपनी सीट ज़रूर रिजर्व करवा लें, प्लीज़ डोंट वॉक इन। 905-206-1008। एंड प्रोटेस्ट राइड फॉलोइंग साइकिलिस्ट का अरेस्ट, ये 2-4 दिन पहले की बात है, जहाँ पर एक स्टॉप साइन पर साइकिलिस्ट नहीं रुका था, बाद में पुलिस को उसने कुछ फाउल अब्यूसिव लैंग्वेज का भी पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल किया, एंड देन 3 or 4 कॉप्स जंप्ड ऑन हिम और उसे अरेस्ट किया। आजकल वीडियो हर एक के हाथ में फ़ोन होता है, सो पीपल जस्ट यू नो टेक द वीडियो एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग द पुलिस फॉर डूइंग ऑल दैट, जबकि पुलिसिंग का जो काम है वो भी कोई बच्चे का खेल नहीं है। दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट, एंड जब 8-10 आवर की शिफ्ट पर एक पुलिस वाला घर से निकलता है तो यू नो यू हैव नो आइडिया वॉट दैट पर्सन ही और शी इज़ गोइंग थ्रू। सो और पुलिस के राइट्स भी इतने ही होते हैं, जो पुलिस वाले कोई 2-1 ऐसे होते हैं जो शायद अपने राइट्स को अब्यूज़ करें वो अलग बात है, बट ओवरऑल द वंस दैट द वे दे बिहेव विद अस इवन इफ वी आर स्पीडिंग और हमें रोका जाता है तो फिर सर कह के ही आपको संबोधित किया जाता है। इट्स नॉट लाइक बैक होम, जहाँ पर तो ऐसा भी हमने देखा है जहाँ पर पुलिस वाला पहले थप्पड़ लगाता है फिर बात करता है, इस तरह की चीज़ें हमने बैक होम देखी हैं। चलिए, सीए की वर्स्ट रोड की लिस्ट आ चुकी है, और उस रोड में लिस्ट में जो है काफ़ी ऐसी स्ट्रीट्स रोड्स का मेंशन किया गया है दैट आर द वर्स्ट इन द प्रोविंस, जिसमें हम टोरंटो वाले कैसे पीछे रह सकते हैं। 4 ऑफ द स्ट्रीट्स टोरंटो में भी मौजूद हैं जो कि उस वर्स्ट रोड्स की लिस्ट में शामिल हैं। टोरंटो स्टील, शेपर्ड एवन्यू वेस्ट, बैथर्स्ट, अनविन एवन्यू अमंग ओंटारियोज 10 वर्स्ट रोड्स। मैन इन हिज 30s हैज सीरियस इंजरीज आफ्टर शूटिंग ऑन वेस्टमो ड्राइव नियर हम्बर कॉलेज बुलेवार्ड, ये टोबिको से खबर आई है सामने। ऐसे करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें. WaynesAutoGroup.com.

0: जोशी।
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Jab

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040.
3: Another Don Clean with the Don Dux.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: लेक डेदा प्लान सी पर टोयोटा टंडरा दे बिना सकून नहीं शोर मिलिया जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ ता एस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है रेड टेक डेज दा लाभ लाओ लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर खोल जा
2: गुड आफ्टरनून शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Your Care, McVean Dental Care, Brampton TV and Appliances, Rajdhani Sweets and Restaurant, Win Lifetime Trading. शुरू करते हैं ताजा तरीन हेडलाइंस. श्रीलंका के एल्डरली केयर होम में आग लगने से 12 लोग अब तक मारे गए. द यंगेस्ट विक्टिम वॉज अ 17-year-old बॉय. यूनाइटेड स्टेट्स ने कंफर्म किया फ्लैश ईटिंग न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म केस इन टेक्सस. रिपोर्ट के अनुसार एलॉन मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स का लक्ष्य है टू रेज रिकॉर्ड $75 billion इन स्टॉक मार्केट डेब्यू टू मेक ट्रंप्स वेल्दी ऑफिशियल्स even more richer. Trump ka kehna hai ki Iran talks going very well. Is weekend tak better results aayenge from the talks. Trump ne ye bhi kaha ki France ke G7 summit ko karenge attend. US Secretary of State Marco Rubio ne India ko apna strategic ally bataya. Hopes for quad meeting in 2026. US envoy Sergio Gord ne kaha Trump values India's ties and friendship with PM Modi. Iranian drone strike ke baad Kuwait एयरपोर्ट टर्मिनल स्पोक से भरा. कुवैत एयरपोर्ट के धमाके में एक इंडियन सिटीजन की भी मौत हुई. एंड फोर्स लेबर के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप टू हिट मोर देन 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा विद सम न्यू टैरिफ्स. इजरायली स्ट्राइक्स ने लेबनान में 9 लोगों को मारा. हिजबुल्ला ने बॉर्डर के पार छोड़े रॉकेट्स. लोकल समाचारों में प्रोविंस की 10 वर्स्ट रोड्स की लिस्ट में 4 टोरंटो स्ट्रीट्स शामिल. जूश लोगों पर टोरंटो में शॉट्स फायर करने वाले मामले में 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया. एंड रेक्सडेल शूटिंग में मैन इन हिज 30 सीरियसली इंजर्ड. टीटीसी बस कलिजन में 3 महिलाओं और 1 बच्चा पहुंचा अस्पताल. हैमिल्टन पुलिस ने मिसिंग 7-year-old बॉय को लोकेट किया. हैमिल्टन पब्लिक हेल्थ का कहना है कि रेबीज कंफर्म्ड इन बैट्स. भारतीय समाचारों में ममता बनर्जी की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा हुई. अनदर टीएमसी मेयर क्विट्स. आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने पंजाब के स्कूल्स में लार्ज स्केल मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन ड्राइव को लॉन्च किया. बीके हरिप्रसाद ने डीके शिवा कुमार को रिप्लेस किया एज कर्नाटका कांग्रेस चीफ. एंड मॉनसून सेशन डे 1 पर उमर अब्दुल्लाज पार्लियामेंट प्रोटेस्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड. चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को हासिल करने के लिए रीसेट बटन प्रेस किया. दिल्ली होटल फायर में गुरुग्राम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के 7 फैमिली मेंबर्स भी मारे गए हैं. टोटल 21 पीपल किल्ड. At 16,700 feet near China border, Ladakh gets India's first model border village. Small modular reactors per Chintan Research Foundation ne policy dialogue organize kiya. Policy makers and industry leaders come together. Delhi hotel fire maamle mein building owner ko hirasat mein liya gaya. Assam ke ek car se minor ladki ko rescue kiya gaya, was raped for months. 5 logo ko arrest bhi kiya gaya. Ghaziabad mein bulldozer action dekha gaya. Illegal madrasa on government land has been destroyed. And Pune IT firm shuts overnight. 700 employees who are jobless. CEO has been arrested. Delhi hotel fire mein survive hone wale 15 logo mein se 13 foreigners shamil the, still under treatment at nearby hospitals. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से फॉरेन ऑफिस का कहना है कि सोमाली पायरेट्स के कैप्चर किए हुए 10 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स के रिलीज के लिए कोशिश पूरी जारी है. इंडिया के हाइड्रो टेरर को देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने डायमर भाषा डैम के अर्ली कंप्लीशन की गुहार लगाई है. पीपीपी चीफ ने पीएम से कहा टू शो शहबाज स्पीड इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. बिलावल ने यह भी कहा कि मोदी गवर्नमेंट यूजिंग वाटर एज अ टूल ऑफ टेररिज्म. गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल ने फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज का वादा भी किया. गवर्नमेंट टू प्रेजेंट बजट ऑन जून 10th. फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने किया कंफर्म स्ट्रेसेस कोऑर्डिनेशन विद आईएमएफ एंड एलाइज ऑन बजट. गवर्नमेंट एंड पीपीपी ने करंट एक्सपेंडिचर्स और डेवलपमेंट स्पेंडिंग पर की चर्चा. पंजाब गवर्नमेंट ने हॉट वेदर को देखते हुए मार्केट क्लोजर टाइमिंग्स को एक्सटेंड किया अंडर न्यू मेजर्स. ऑल रेस्टोरेंट्स सिनेमाज ईटरीज टू ऑपरेट अंटिल 11 PM. ओडीजीसी ने सिंध के संघर में सिग्निफिकेंट ऑयल और गैस डिस्कवरी की है. डिस्कवरी ओपन्स न्यू एक्सप्लोरेशन विंडो. सुप्रीम कोर्ट ने जहीर जाफर के रिव्यू पिटिशन को रिजेक्ट किया. अपहोल्ड्स डेथ सेंटेंस इन नूर मुकादम केस. और सिंध गवर्नमेंट टू इशू मैट्रिक रिजल्ट्स बाय जुलाई 10th एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बाय July 31st. स्पोर्ट्स जगत से शॉन टेट ने ऑस्ट्रेलिया ओडीआई से पहले स्टेप डाउन किया एज बांग्लादेश बोलिंग कोच. आरसीबी के स्टार बैटर टिम डेविड के सिगार वीडियो ने इंटरनेट को डिवाइड किया. कई लोगों ने कहा द वीडियो इज एआई जनरेटेड एंड हैज बीन टैम्पर्ड विद. आरसीबी मैनेजमेंट येट टू रिस्पॉन्ड. सूर्य कुमार यादव सेट टू बी रिमूव्ड एज द कैप्टन ऑफ इंडिया T20 टीम 3 months आफ्टर T20 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल. एंड बॉलीवुड खबरों से प्रोड्यूसर पहलाज नेलानी का निधन हुआ. ही वॉज 76. गोविंदा ने क्रिमेशन पर अपने मेंटोर को याद किया. शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 का बजट आया सामने. प्रोडक्शन कॉस्ट एट 95 करोड़ रुपीस एंड एक्टर की फीस एट 35 करोड़. अशोक पंडित ने कंगना रनौत को स्लैम किया ओवर रणवीर सिंह डॉन 3 कंट्रोवर्सी और कहा यू टॉक रबिश and that's why I banned you, Kangana. Varun Dhawan faces backlash for wearing shorts and vest to Mumbai temple. Logo ne kaha, ye hai fake devotion. 12 June ko Aamir Khan ki Lagaan theaters mein re-release hogi. Aamir Khan ne girlfriend Gauri Sprat ke saath July wedding ko confirm kar diya hai. Aamir ne kaha, the news is true. प्रीति जिंटा के मुंबई ज्वेलरी स्टोर लॉन्च पर पहुंचे उनके डियर फ्रेंड बॉबी डियोल. ये थे साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055. स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल. एंड द हेडलाइंस वर ब्रॉट टू यू बाय cholebhature.ca as well. सर्विंग फ्रॉम 4 लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसागा. टेक आउट डाइन इन ऑप्शन चारों लोकेशंस पर अवेलेबल हैं. कॉलर हैं उन्हें लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
7: ना कैसे है?
2: सॉरी, ओके, कॉल बैक कर लीजिए 416-593-0055. बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एंड अदनान सामी की आवाज में तेरा चेहरा. दिस वाज दैट एल्बम दैट केम आफ्टर लिफ्ट करा दे एंड वाज अ ह्यूज हिट. ये इनकी जो एल्बम थी सारे के सारे गाने हिट थे बैक इन दोज डेज. आज से 20-25-30-35 साल पहले जब गीत आते थे तो एक एल्बम में 6 to 8 सॉन्ग्स हुआ करते थे एंड बड़ा मज़ा आता था गीतों को एंजॉय करने में. लेकिन गॉन आर द डेज. अब तो सिंगल्स आते हैं और बड़ी मेहनत मुशक्क़त से हमारे आज के सिंगर्स 3 minutes 11 seconds का गाना रिलीज़ करते हैं. उसकी धूमधाम इस तरह से की जाती है, उसके पीछे इतना पैसा जो है पोर किया जाता है ताकि बता दिया जाए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हिट गाना है. एंड गेस व्हाट हैपेंस आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 6 weeks, उस गाने को कोई याद नहीं रखता. ये फ़र्क है म्यूज़िक का फ्रॉम व्हाट वी यूज़ टू हियर एंड व्हाट वी हियर नाउ. अदनान सामी, तेरा चेहरा, इन्जॉय. आई विल बी बैक.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: 10 मीटर बस इतना को याद रखो, तुहानू उपरों लंघ दियां बिजली दियां पावर लाइन्स तो घट्टो घट 3 मीटर दूर रहना चाहिदा है। ओंटारियो विच बिजली तो होण वाली मौतां दा एक प्रमुख कारण पावर लाइन्स हन, अते बिना छुए भी तुहाडी मौत दा कारण बन सकदियां हन। जेकर तुसीं बाहर काम कर रहे हो तां उपरों लंघ दियां पावर लाइन्स वल ध्यान दिओ। अपने आप नूं अते अपने उपकरणां नूं इन्हां तों घट्टो घट 3 मीटर दूर रखो। इलैक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों सुनेहा, esasafe.com/stoplooklive ते होर जाणो।
2: हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
0: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 9054582222, और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finlay Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
5: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
6: अच्छी, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
5: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
7: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 9054582448।
8: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
9: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानु ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5, $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
10: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
11: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
12: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
11: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
12: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
11: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
12: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
11: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
10: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं. एंड याद रखें, फ्री सेमिनार सैटरडे को होता है 12:30 to 3:30. दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गो. फ्री सेमिनार है, कोई चार्ज नहीं है. आप अपनी सीट रिजर्व करवाएं, चाहे आप अकेले जा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं, एंड गो एंड चेक इट आउट. 905-206-1008 मिसागा में इनका ऑफिस लोकेटेड है. विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, मोहम्मद साहब आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून
1: जी आपको भी. एंड मोहम्मद साहब, आज क्या दिमाग में आपके आ रहा है? क्या इतने सालों से विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग के जरिए You've helped people earn $2,000 to $6,000 महीने का, वो भी US. आपके दिमाग में आज क्या आ रहा है? What is it that you want people, खासकर the times that we are going through right now?
2: बिल्कुल सनी जी, देखें अभी जैसे हालात आगे आ रहे हैं तो आई एम सीइंग लाइक अ chaos. देखें अभी लोगों की mortgages भी नहीं पे हो रही हैं और हालात आगे से और वर्स आ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा स्किल ले लें जो पिछले 18 साल से हम एक सेम लोकेशन से अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं. और वो ये है कि एक ऐसा स्किल के जो भले मार्केट नीचे जाए भले मार्केट ऊपर जाए, 100% रिसेशन प्रूफ जो बिजनेस है वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का. और मोस्टली लोग इसमें पैसा लूज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉपर एक नॉलेज नहीं है. और दूसरा ये है कि वो डरे होते हैं कि हम इसमें पैसा ना लूज कर दें. देखिए ये जो डर होता है ना, ये इसका रीजन सिर्फ एक चीज है और वो क्या है कि नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन टू यू. अगर आपके पास ये नॉलेज हो, आपके पास ये पूरे का पूरा सेटअप हो, एक एनवायरमेंट में आप बैठे हों कि देखें आज सुबह हमारी 8:30 पे लोग डन हो गए थे. और हर रोज ऐसा ही होता है. अच्छा, काफी लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि जी ये जो 100 to 300 US dollars, अच्छा ये मिनिमम है. ये बाय द वे मैं बता दूं, लोग 15,000-20,000 US महीने का बनाते हैं. ये एक नॉर्मल सी बात है. अभी लोग ये सुनते हैं जब, तो कहते हैं हाउ इट पॉसिबल कि मैं 14 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे काम करने के बाद भी मेरे पास महीने में 5,000-7,000 नहीं आता, तो ये कैसे बनाते हैं? बिलीव मी, ये मेरा चैलेंज है कि लर्न द पावर ऑफ 90 मिनट. इसका मतलब है कि सिर्फ हमने 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है. आके देखें कैसे हाउसवाइफ्स घर से बैठ के, जो बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, सीनियर सिटीजन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो कैसे विद इन 10-20 मिनट, ये 90 मिनट की जो हमारी ये विंडो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है. देखें अगर मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपने कमाई चेंज करनी है ना, तो उसमें दो चीजें आप चेंज करें. एक उसका तरीका चेंज करें और दूसरा द वे यू थिंक उसको चेंज करना है. देखिए जिंदगी में हमारे पास हर वो चीज जो आती है ना, वो आती है हमारी पावर ऑफ हमारी थॉट से. अगर आप चीजों को डिफरेंट वे से सोचना चाहते हैं तो अपनी थॉट्स को आपने चेंज करना है. अगर आप अपनी रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी सोच को बदलें. और डोंट वरी अबाउट फ्यूचर. यार मैं ये समझा के थक गया हूं कि हम लोग ना बैठ के फ्यूचर की वरी वो कर रहे होते हैं. वरी नहीं करना, फ्यूचर की प्रिपरेशन करनी, उसके लिए तैयारी करें. आए आके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज, अ लॉट टू गेन. आके सेमिनार अटेंड करें. आई बेट यू आप कहोगे कि यार ये हमने इतने साल क्यों वेस्ट किए हैं. आए आके देखें कि कैसे आप भी उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं. देखिए दुनिया में कहीं पे बैठे हुए हैं, आपको फोन पे सिग्नल आ रहे हैं, आपको लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है कि आपने क्या करना है. तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉल करके अपनी सीट बुक करें और आके एक दफा देखें तो सही कि ये क्या चीज है और कैसे आप हमारा पार्ट बन सकते हैं. तो कॉल करके अपनी सीट बुक करें एट 905-206-1008 और यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड.
1: बिल्कुल जी, 905-206-1008. मोहम्मद साहब ने जो कहना था कह दिया. अब बारी हमारी है, जिनके पास आप अगर अवेलेबल नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट सैटरडे को आप इतना सा टाइम निकाल सकते हैं 12:30 to 3 के बीच में आप अपनी सीट जो है रिजर्व करवाएं कॉल करके. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप भी एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 to $6,000 मंथली कमा सकते हैं, वो भी US. चलिए 905-206-1008 905-206-1008 नंबर है जिस पर आपने करना है कॉल. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया.

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit karein waynesautogroup.com.
1: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ
2: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
1: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
2: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ
1: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ
2: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
1: 647-739-8710 लाइसेंस नंबर M200-34504
3: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए
4: वाओ मॉम डैड इज इन अ जॉली गुड मूड टुडे व्हाट इज द रीजन
5: दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फेमस मसाला चाय बाय नेविगेटर्स कैफे
4: This place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड जितेंद्र गंदम भी हमारे साथ हैं कुछ मस्कोका की कॉटेज की जानकारी लेकर आए हैं कॉटेज प्रॉपर्टी है उससे पहले एक कॉलर हैं उन्हें भी लेते हैं आप ऑन एयर हैं प्लीज गो अहेड
8: हेलो
7: हेलो जी प्लीज गो अहेड
8: सनी जी हाउ आर यू
7: गुड गुड फर्स्ट क्लास आप सुनाइए
8: ओके जस्ट वन रिक्वेस्ट दिलाज शायर है गमाज नगमा है गैम्बलर
7: ठीक है जी मैं आई विल प्ले इट राइट आफ्टर दिस सेगमेंट
8: No problem. ठीक है? Thank you, sir.
7: Thank you, brother. Yeah. दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम. जबरदस्त गीत लाइन अप कर दिया है आपके लिए हमारे कार्तिक साहब ने लेकिन उससे पहले जितेंद्र गंदम हमारे साथ है रियल्टर मस्कोका में एक कॉटेज है बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है 2 acre की और अगर आप इंटरेस्टेड हैं द सेलर्स रियली हाईली मोटिवेटेड नंबर है 416-265-2222 4162652 जितेंद्र जी से बातचीत करते हैं जानते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और कुछ जितेंद्र थोड़ा स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो ते
9: हेलो सत श्रीकाल जोशी भाजी गुड आफ्टरनून ते अज आप अपने स्रोतों लिए मस्कोका दे विच एक कॉटेज लेके आए हैं ये जी कॉटेज है 2 acre के लॉट दे विच बनी हुई है 2 साल तो घट समा होया इस कॉटेज नूं बड़े हुए नूं 3 bedroom ने 3 washroom ने प्लस तुहाडी कोल अनफिनिश बेसमेंट है जिहदे विच तुसीं एक्सट्रा बेडरूम बना सकते हो फुली अपग्रेडेड प्रॉपर्टी है यह प्रॉपर्टी एयरबीएनबी ते चल रही है पिछले 1.5 साल तो लास्ट ईयर 2025 दे विच लगभग $100,000 दे लागे छगे एयरबीएनबी ते दा रेवेन्यू सीगा प्लस ओनर आप भी उत्थे जाके रह रहे हैं जे तुसी इस प्रॉपर्टी नूं लेना चाहुंदे हो इदां दी कॉटेज ते साडे नाल इक वारी गलबात कर लिओ साडा नंबर 416-265-2222 रियल एस्टेट दी मार्केट दे विच कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहुंदे हो जां सेल करना चाहुंदे हो कॉल 416-265-2222 थैंक यू वेरी मच
7: जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र ते नंबर एक बार फिर तो दे दवा 416-265-2222 जितेंद्र जी का नंबर है जिस पर आप इस मस्कोका वाली कॉटेज की जानकारी के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं हाईली मोटिवेटेड सेलर हैं 416-265-2222 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा पर नेम ब्रांड सनग्लासेस की बहुत जबरदस्त सेल चल रही है एंड यू नो दिस टाइम ऑफ द ईयर वेयर वी नीड दोज काइंड ऑफ प्राडा गुची डोल्ची गबाना रेबैन के जबरदस्त नेम ब्रांड सनग्लासेस सो क्लियर ऑप्टिकल इज वेयर यू नीड टू गो क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा ब्रैम्पटन जॉर्ज टाउन 2 locations से आपको करते हैं सर्व एंड ओके हमारे लिसनर की रिक्वेस्ट है द किशोर कुमार साहब की आवाज में द ग्रेट किशोर कुमार एंड द मूवी वॉज गैम्बलर दिल आज शायर है इंजॉय द सॉन्ग फिर स्टूडियो में बहुत जल्द हमारे लोकल डेवलपर बिल्डर अतीक खान साहब हमारे साथ होंगे वी विल टॉक टू अतीक भाई इन रिगार्ड्स टू दिस अमेजिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट जो वो लेकर आए हैं हमारे लिसनर्स के लिए एंड हाउ थ्रू दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट यू कैन make money. You can multiply your investment ya money ki jo growth hai wo kis tarah se kaise wo sab par roshni dalenge Atik bhai. Airport launches summer travel season with revamped welcome center outside international arrivals in terminal 1. Ye person ki taraf se khabar aayi hai. Chaliye aise karte hain, enjoy karte hain beautiful sa geet, aate hain bahut hi jald wapas. Studio ka number 416-593-0055. I'll keep taking the requests all the way till 2 p.m.

0: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर अते उन्हां दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
1: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldeadsolutions.ca।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक और कहानी मेरी जुबानी। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सुबह सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का अक्सर जवाब गाली से ही देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वो आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उसने, एक इंसान ने जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? Stay blessed. Life I refuse to give up.
3: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों?
4: नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सैगल, 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट पॉलसिक्योरिटी.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: Hi everybody, this is Neeraj Sridhar, also known as Bombay Vikings. Right now you're listening to South Asian Unlimited Radio.

0: किसी को जीते हुए आए ना काम कभी, मरने के बाद गए भी तो क्या ही मतलब, दौड़ते रहे जिंदगी भर औरों के इशारों पर, रुक के खुद से बात ना की तो क्या ही मतलब। एक ही शहर में रहकर मिलना ना हुआ कभी, एक ही शहर में रहकर मिलना ना हुआ कभी, तेरा पास रहकर भी बता क्या ही मतलब। जो तू समझता है मुझे एक तिनके बराबर, जो तू समझता है मुझे एक तिनके बराबर, तेरा मुझ पर हक जताकर भी क्या ही मतलब, तेरा मुझ पर हक जता के ही क्या ही मतलब।
1: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है, बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ 416-666-2745।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। इस सेगमेंट को मैं अक्सर जो स्पेशल सेगमेंट्स होते हैं, जो एजुकेशनल सेगमेंट्स होते हैं, जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट्स होते हैं, मैं ऑलवेज कहता हूँ ध्यान से सुनिएगा इस सेगमेंट को इन टोटैलिटी फॉर मेनी रीजंस। बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोकल डेवलपर बिल्डर सदर्न ओंटारियो में जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं और राइट नाउ ऑल्सो ही इज़ डूइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, अतीक खान साहब स्टूडियो में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले हफ्ते भी हमने बात किया था $60,000 पर एक एकड़ वाली इस लैंड का, 100 acre की हमने बात की थी। एंड द गुड थिंग इज आई हैव सो मच इन्फॉर्मेशन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि कई बार वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, अतीक भाई इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, पर मैं अपनी आंखों से यह चीज देख रहा हूं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट। क्या देख रहा हूं वो मैं बताता हूं। अतीक भाई का नंबर नोट करें, 416-666-2745, 416-666-2745। दिस इज नॉट लाइक द कॉन्डोज जो आप ऑलवेज इस एड में, अतीक भाई के एड में सुनते हैं। ऐसा नहीं कि भैया कॉन्डो ले लिया, वो था इतने का, अब इतने का, अब क्या होगा इधर, दिस इज नथिंग लाइक दैट। ये हम लैंड की बात कर रहे हैं, ये हम जोनिंग की बात कर रहे हैं, और अतीक भाई इज एन एक्सपर्ट एट डूइंग दैट, ही इज बिन डूइंग इट सक्सेसफुली फॉर 26 years, कि किस तरह से लैंड की जोनिंग बदल के पैसा कमाया जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं है, मैं कई बार किसी पीस ऑफ लैंड को देखता हूं, आई हैव नो आइडिया कि भाई ये लैंड की जोनिंग किस किस चीज में बदली जा सकती है। हाँ, कई बार एक जरूर आइडिया आता है किसी अच्छी पीस ऑफ लैंड को देख के कि यार यहां पे प्लाजा हो तो मजा आ जाए, यू नो, रेस्टोरेंट्स होंगे, अदर बिजनेसेस होंगे। दिस व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ, इस लैंड के करीब अमेज़न, फेडेक्स, यू नो, मैग्ना, वी टॉकिंग अबाउट द बिग बिग नेम्स, जो मैकेसन के जो बड़े बड़े, स्लीप कंट्री, रेड पैथ, यू नो, I'm looking at some big names here, जो कि लैंड के बिल्कुल करीब ऑलरेडी सिचुएटेड, लोकेटेड हैं। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको अतीक भाई लेकर आए हैं, कंपेरेबल्स तक भी मेरे सामने लेकर आए। I'm looking at it as of, ये मतलब as of June 3rd, today is June 4th, I'm looking at this stuff in front of me and there's so much of stuff जो कि प्रूव करता है with all that I'm looking at कि कितना lucrative हो सकता है इसमें कदम रखना। लेकिन yes, जब आपकी आपकी investment होती है, आपके पैसे होते हैं, आपके पास हज़ारों सवाल भी हो सकते हैं, जो कि is absolutely fine, that's

0: you know, Pluto, planet, Neptune, Jupiter and all that stuff. In regards to जो हम बात कर रहे हैं 416-666-2745 अतीक भाई आपका स्वागत है.
1: थैंक यू सो मच सुनीत साहब, आपको, आपके लिसनर्स को, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब.
0: जी गुड आफ्टरनून, आदाब. एंड अतीक भाई, द गुड थिंग इज कि मुझे ये सब कुछ देखने का मौका मिल रहा है. मुझे ये तक भी अब पता चल गया है कि ये 100 acres की लैंड जिसके बारे में पिछले हफ्ते से आपने बात करना शुरू किया है, दिस इज इन बेलविल, दिस इज अबाउट आवर एंड हाफ फ्रॉम वेयर वी आर राइट नाउ. अगर हम बात इटोबिको की बात करें या हम पिकरिंग एजैक्स के एरिए की बात करें, इट्स अबाउट 40-45 minutes सपोजिटली. क्या है इसमें, मतलब जो मैं देख रहा हूं, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन दैट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ, ये जबरदस्त लुक्रेटिव लग रही है क्योंकि ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड थिंग्स आर अराउंड इट. सो इस लैंड को उस चीज का बड़ा फायदा है. ये नहीं कि लैंड ले ली, जोनिंग बदली एंड देन वी आर वेटिंग फॉर अदर कंपनीज टू कम इन. सो इस पे प्लीज खुल के जरा रोशनी डालिए.
1: तो लिसनर्स, इस तरह से समझो कि जिस वक्त कोई बड़ा प्लेयर आ रहा होता है, जैसा अभी सनी साहब ने कहा कि आपका PNG है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वॉलमार्ट है, कॉस्को 700 acres की जमीन ली है.
0: वाओ,
1: 700 acres की जमीन, उसमें कॉस्को अपना वो बनाएगा, स्टोर भी बनाएगा, साथ में जो गैस देते हैं वो भी बनाएगा. सो और वहाँ कितने एम्प्लॉयज आएंगे, कितना बड़ा हेडक्वार्टर होगा. आपको देखना होता है कि जब कम्युनिटीज मूव करती हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. राइट नाउ इस इकॉनमी में सिर्फ 2 जगह डेवलपमेंट हो रही है. नॉर्थ में अगर आप चले जाएंगे तो न्यू मार्केट, इनिसविल, बैरी, ये एरिया में ग्रोथ हो रही है. साउथ साइड पे चले जाओगे तो आपको नायग्रा फॉल का एरिया मिल जाएगा, वहाँ ग्रोथ हो रही है. और तीसरा है ये बेलविल एरिया, किंगस्टन एरिया, इधर ग्रोथ हो रही है. इधर का मैं क्यों इस तरह ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जितनी भी यूरोपियन कम्युनिटीज़ हैं
0: जी,
1: वो सब की सब इधर मूव हो रही हैं. और मज़े की बात ये कि जो कंपनीज आप सामने देख रहे हो, इसमें से भी आधी से ज़्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं
0: जी.
1: तो कंपनीज, उनका स्टाफ, उसमें ग्रीक आ गए, फ्रेंच आ गए, स्पेनिश आ गए, इटालियन आ गए, ये सब लोग मूव हो रहे हैं
0: जी.
1: 100 acres की लैंड मुझे कोर्ट के थ्रू मिल रही है. सो यू आर नॉट पेइंग द प्राइम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज यू मेंशन 2 minutes अगो, कि इधर आपके पास कंपेरेबल पड़े हुए $7 lakh पर एकड़ की अगर कोई लैंड है, $5 lakh पर एकड़ की अगर कोई लैंड है, उसके कंपेरेबल आपको मिल रहा हो $60,000 पर एकड़. तो सनी साहब, अब मुझे इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक इस स्टेटमेंट ने अपनी बात खुद ही कर दी
0: जी.
1: अगेंस्ट ऑल ऑड्स क्या होता है, और मेरे लिसनर्स इस बात को अच्छी तरह समझेंगे. आई एम जस्ट, आपने बात करी कि कोई प्लूटो या वीनस की बात ना करो, मैं आपको ले चलता हूँ छोटे से प्लूटो, अफगानिस्तान
0: जी.
1: सारा टाइम वॉर के अंदर ही रहा है वो कंट्री, इकोनॉमी को कोई बढ़ने नहीं दिया. उन्होंने क्या दिया, राशिद खान जैसा प्लेयर.
0: एग्जैक्टली.
1: सूर्य कुमार, बच्चा 15 साल का, फिजिक्स के सारे लॉ उसने डिफाई कर दिए. 20-20 बॉलों में सेंचुरी बनाना आसान नहीं है. ये लाखों में एक ही बंदा पैदा होता है ऐसा, और फिर वो सारी चीज़ें चेंज कर देता है. इसी तरीके से लैंड डेवलपमेंट में ये 100 acres आपकी लाइफ चेंज कर देगी.
0: आई एम जस्ट सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. आई एम जस्ट रीडिंग एज यूर टॉकिंग अतीक भाई, कि कॉस्को हैज बिन अप्रूव्ड. सो मैं टाउन का नाम भी ले देता हूँ, बेलविल. बेलविल इज द प्लेस. बिग डे इसको कहा जा रहा है कि भैया कॉस्को का अप्रूव होना किसी भी कम्युनिटी में, अगर कॉस्को आ जाए, वॉलमार्ट आ जाए, तो मतलब कि भैया बात सुपर हिट है.
1: और कितनी रिसर्च करके आते होंगे. आपको क्या लगता है कॉस्को को और जगह नहीं मिल रही होंगी खरीदने को, या वॉलमार्ट को नहीं मिलेगी? उसके बाद मेयर इन्वॉल्व हो रहा है. मेयर को $16 million गवर्नमेंट ने दिए हैं. किस बात के लिए? सुवर सिस्टम ठीक कर दो, पानी की लाइंस ठीक कर दो, इलेक्ट्रिक लाइट ठीक कर दो. क्योंकि जाहिर है जब ये बड़े बड़े जाए, 16 मिलियन खर्च करते करते भी टाइम लगता है सनी भाई. कहना बड़ा आसान है, 16 मिलियन कहाँ लगाओगे? दैट्स हाउ यू इन्वेस्ट. और मेरा क्या काम है, सस्ते में लैंड खरीदी
0: जी,
1: उस पे उसके समझ लीजिए आप इमेजिनरी 4-5 टुकड़े कर दिए
0: जी,
1: 10-10 acres वाले. एक के ऊपर आपने होटल लेके आ गए, एक के ऊपर आप वो गैस स्टेशन लेके आ गए, एक टुकड़े में आप प्लाजा लेके आ गए, एक टुकड़े में आपने सीनियर होम्स बना दिए
0: जी,
1: रिटायरमेंट कम्युनिटी बना
0: दी. दैट्स द फ्यूचर,
1: दैट्स द
0: फ्यूचर, और आई शुड से दैट्स द प्रेजेंट राइट नाउ. ब्रैम्पटन में भी मैं इस तरह से एक सीनियर होम देख रहा हूँ, दैट्स कमिंग अप सॉर्ट ऑफ. और मेरे कई बार मैं अपनी वाइफ को भी ये कहता हूँ कि द फ्यूचर, including myself, you know, if I'm looking at, maybe हमारी generation का future शायद उस senior home में ही होगा, and that is the need of the hour.
1: That is the need of the house. और आज की तारीख में आपने जैसे अपने family की

0: बात कर ली
1: yeah.
0: मिलियन प्लस में आपको घर मिलेगा इन एरियाज में, तीन तीन चार चार लाख में, तीन तीन चार चार हजार स्क्वायर फुट के घर बन जाएंगे.
1: wow.
0: तो आप यहाँ से रिटायर हुई डेढ़ घंटा दूर चले जाइए और आपके पास सारी वहां पे अमेनिटीज अपनी होंगी.
1: जी.
0: अच्छा, एज ए इन्वेस्टर आपके पास अगर यही $60,000 हो, तो जैसा आपने कहा था कि आपने एक कॉन्डो बुक करा लिया, कोई घर बुक करा लिया, फिर उसके आप 20-30% तक डाउन पेमेंट दोगे.
1: एग्जैक्टली.
0: अप टू गेट योर मॉर्गेज अप्रूवल.
1: जी.
0: उसके बाद आप बैंक से लोन लेंगे और हर महीने चार चार पाँच पाँच हज़ार पैसे पे करेंगे. सनी साहब, मेरा पूरा बिजनेस कैश पे खड़ा हुआ है. आई एम वन ऑफ दोज डेवलपर्स जो डेट लेते ही नहीं है. यही रीज़न है मैं सर्वाइव कर गया और कितनी ही कंपनीज आज बंद भी हो चुकी है.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि दे गॉट बैंकरप्ट.
1: बिल्कुल.
0: पैसे नहीं है बैंक को देने के लिए. ये जो जिनकी बात हो रही है 100 acre की, इनके साथ भी यही हुआ. सेकंड और थर्ड मॉर्गेज है इनके ऊपर 14-14, 16-16% का.
1: वाओ.
0: कोर्ट वाला सर पीट रहा था अपना वो जज कि मैं 16% का ये मॉर्गेज कहाँ से उतारूंगा. कौन उनको बेल आउट कराएगा? तो अनफॉर्चुनेटली ये उनके लिए था ही नहीं जिन्होंने ये लैंड परचेज करी.
1: जी.
0: हम आधे पैसों में वो लैंड परचेज कर रहे हैं और जैसे ही वो 3-4 lakh पर एकड़ का टारगेट हिट करेगा, यू सेल योर प्रोजेक्ट, गेट आउट ऑफ इट, एक छोटा पोर्शन अपने पास रख लें. अगर मान लीजिए जो मेरा छोटा सा ग्रुप बना है वो सारे के सारे वो लोग हैं जो कहते हैं हम स्टोरेज प्लेस खोल के रखेंगे, हम डे केयर खोल
1: के रखेंगे, हाई डिमांड राइट नाउ.
0: हाई डिमांड राइट
1: नाउ. काम कम है, रिटर्न ज्यादा है.
0: एग्जैक्टली. थैंक यू. आपने मेरे मुंह के वर्ड छीने कि 60,000 को 600 पे ले जाना, ये मेरा काम है. मैं वो जॉब करूंगा, आप बैठ के पैसे काउंट करें.
1: जी. अधिक भाई, ये बेलविल वाली जो ये लैंड है, एक तो ठीक है कि यू बिन डूइंग इट फॉर 26 years, सो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि भाई मैं तो इतनी रिसर्च घर बैठे वैसे ही कर लेता हूँ. कैसे आइडिया आपके दिमाग में आया? क्योंकि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये सारा कुछ जो मेरे सामने है राइट नाउ दोस्तों एज आई स्पीक, कि बेलविल में दे आर गेटिंग लाइक $16.1 million इन फेडरल हाउसिंग फंडिंग अवॉर्डेड अर्लियर दिस ईयर, जो कि सपोर्ट करेगा उस एरिया के सैनिटरी पंपिंग स्टेशन को इन बेलविल्स वेस्ट एंड. ये आपके दिमाग में कैसे सारा आइडिया आया कि भाई ये तो गोल्ड माइन, आपके नज़र में कैसे आई?
0: तो सनी साहब, ये जो कुछ गोरे हैं, मैं ऑफिशियली तो ऐसे नाम नहीं ले सकता बट समझदार को इशारा काफ़ी होता है, कुछ गोरे 100 साल आगे का सोच रहे होते हैं. और हम में और उनमें यही फ़र्क है, हम अभी की सोच रहे होते हैं, आगे का नहीं सोचते.
1: बिल्कुल नहीं.
0: उन लोगों ने 200-400, 400-600 acre की ज़मीन खरीद के रखी हुई है, उसको आहिस्ता आहिस्ता अप्रूव कराते. मेरा काम है, मैं वो इन्फॉर्मेशन पिक कर लेता हूँ. यो समझ लीजिए जो मेरी क्रिस्टल बॉल मेरे पास है वो 6 महीने आगे का मुझे रिटर्न बता रही है. वो मूवी याद है बैक टू द फ्यूचर?
1: बिल्कुल.
0: और ये बिजनेस बैक टू द फ्यूचर है कि आप पीछे जाइए, 2000 की प्राइस पे करिए और 2026 में आ जाइए.
1: बिल्कुल.
0: तो ये बैक टू द फ्यूचर हमने अपनी खुद बनाई है. हम 6 साल पीछे गए, उस प्राइस में परचेस किया जिस प्राइस में वो ओरिजिनल ओनर परचेस करके आया था. उसकी 6 साल की ग्रोथ हमें फ्री में मिल गई. उसको आप कैश आउट कराइए. तो कॉल कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. 416-666-2745.
1: जी दोस्तों, 416-666-2745 अतीक खान साहब का नंबर है. एंड यस, लॉट ऑफ थिंग्स इन प्रोजेक्ट्स लाइक दीज और हमारे जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, हम चाहते हैं कि भैया कॉन्फिडेंशियल रहे. कई बार हम खुलकर वो सवाल नहीं पूछना चाहते. मैं तो ये कहूँगा कि ये होमवर्क अब आपने करना है. ये होमवर्क जो मेरे सामने है, ये अतीक भाई ने किया है, इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, उन्होंने ये सारा रिसर्च किया है कि भाई कौन कौन सी बड़ी कंपनीज यहाँ पे, इनके फुटप्रिंट अब नज़र आएंगे. सो ऑब्वियसली वो लैंड जो है 100 acre की, उसकी वैल्यू किस तरह से ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. छोटे से प्लाजा के कोई प्लाजा हो और पता चल जाए कि भैया उस प्लाजा में कोई वॉलमार्ट टाइप का कुछ आने वाला है, तो दोस्तों इट जस्ट चेंजेस द एंटायर बॉल गेम. मैं कहता हूं एक बार अतीक भाई से जो है संपर्क करें एंड गो फ्रॉम देयर. जितने क्वेश्चंस हैं पूछें, जूम मीटिंग कर लें, इनके ऑफिस अगर आपने आना है. एंड इफ यू डू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और आप एक सॉर्ट ऑफ अ सिंडिकेट आपने बनाया हुआ है कि भैया हमने एक साथ मिलकर ही इन्वेस्ट करना है, दिस कुड बी दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी. 416-666-2745 416-666-2745 अतीक भाई का नंबर है. अतीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच सर.
1: थैंक यू जी. 416-666-2745 और अतीक खान साहब की रिक्वेस्ट है. मेरा खुद का फेवरेट है ये गीत. वी वर टीनेजर्स जब हमने ये गीत सुना था. मुझे याद है पहली बार मैंने कैसेट ली अतीक भाई, और ये आपका फेवरेट गाना मैंने सुना अली हैदर की आवाज़ में, पुरानी जीन्स. इट हैज़ नो बाउंड्रीज इस गीत के. इसकी कोई सरहद नहीं है इस गीत की. ये मुझे लगता है हर टीनेजर, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग पर्सन कनेक्ट्स विद इट.
0: वो जो टी डी के कैसेट्स आते हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग कराने, हाई एंड अच्छी रिकॉर्डिंग कराने 100-200 रुपए निकालना उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था.
1: बिल्कुल.
0: वो पे कर करके ये सब सुने.
1: एब्सोल्युटली. सो पुरानी जीन्स, यू नो, ऐसा लगता है इस कोई कोई गाने से कंटेम्प्रेरी होते हैं. आप 30-40 साल बाद भी सुनो, 25 साल बाद सुनो, ऐसा लगता है यार कल की बात थी
0: और आज का डिस्कशन हो रहा है.
1: सो लेट्स एंजॉय अली हैदर. रिक्वेस्ट है अतीक भाई की खुद की. एंड अतीक भाई को संपर्क करने के लिए नंबर 416-666-2745.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, Wayne's Auto Group इज ऑलवेज देयर। आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 647-863-1940, 647-863-1940।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Ja

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda.
5: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Seerat 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
6: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
7: Hi everybody, this is Neeraj Sridhar, also known as Bombay Vikings. Right now you're listening to South Asian Unlimited Radio.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपकी रिक्वेस्ट हम प्ले करते रहेंगे। एंड अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने अतीक भाई का नंबर मांगा था, एंड प्लीज़ नोट कर लीजिए 416-666-2745 416-666-2745। और ये प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, बेलविल का ये प्रोजेक्ट है, 100 एकड़ की लैंड है एंड $60,000 पर एक एकड़ जो है इज़ गोइंग। एंड इसकी बाकी जानकारी के लिए यू नो टॉक टू अतीक भाई प्लीज़। एंड ओके, ये रिक्वेस्ट है फ्रॉम द मूवी हमराज एंड महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। हमारी लिसनर की रिक्वेस्ट है, लाइन अप कर दिया है। बाहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 29, द मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 30 टुडे, सो इट इज़ नाइस सनी ब्यूटिफुल हॉट, इन्जॉय द हीट जैसी भी है। इट्स नॉट एज क्रेजी एज जो जुलाई अगस्त में कई बार देखने को मिलता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इन्जॉय द सॉन्ग, आते हैं बहुत ही जल्द वापस। विल कीप प्लेइंग योर requests all the way till 2 p.m. or Brampton TV and Appliances, Sultan ji bhi honge hamare saath।

0: दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कर्ना, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days a week, 905-457-3232 फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस। ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल, सीपी चटवाल फॉर रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: Another Don clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: अब घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस हो गई बिल्कुल टेंशन फ्री। अप्लायंस टू फिक्स है आपका भरोसेमंद सर्विस पार्टनर। फ्रिज, ओवन, चूल्हा, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस एक ही जगह। तजुर्बेकार टेक्नीशियन, समय पर काम का वादा। अप्लायंस टू फिक्स अभी कॉल करें हरविंदर 6474071470 6474-407-1470। आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान अब रही हमेशा फिट।
6: Hi, I'm Realtor Sukhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ek var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
1: Long weekend camping plan to mast tha, par Toyota Tacoma ke bina jahan pahunche sabhi wahin pahunche aap bhi. Agar red tag days mein aap Tacoma le aaye to uski rugged capability aur powerful i-force engine aapko le jaye thoda aur dur, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी। एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान, सुल्तान जी हमारे साथ है। ओपन 7 days a week, 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 905-450-2828। कई घरों की दोस्तों क्लोजिंग्स चल रही हैं और क्लोजिंग्स में सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए होती है अप्लायंस लॉन्ड्री, एंड मैं सोचता हूं कि वहीं से शुरू कर लेते हैं सुल्तान जी से। सुल्तानिक डील्स आपको आपकी क्लोजिंग से पहले दिलवा देते और आप जो है पहुंच जाइए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
7: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और जैसे आपने बताया जी, बहुत सारे घरों की क्लोजिंग हो रही हैं। अभी आप बिलीव करें कि हमें किचनर, कैम्ब्रिज, स्टोनी क्रीक, वेलेंड और नियाग्रा फॉल साइड की इतनी क्लोजिंग्स आ रही हैं और कस्टमर इतना फायदा उठा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर वो ले रहे हैं फ्रिज स्टोव डिशवाशर थ्री पीस किचन बंडल तो $5,000 वाला उन्हें मिल रहा है $29.99 में, $2,000 कस्टमर सेव करेंगे। किचन स्टेनलेस स्टील किचन का बंडल है ये, और अगर लॉन्ड्री ऐड करते हैं जी तो टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला सिर्फ $10.99 का है, और अगर स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए वॉशर नीचे ड्रायर ऊपर स्टैक हो जाएगा $2,200 वाला $14.99 का है, $700 लॉन्ड्री सेक्शन में और $2,000 किचन सेक्शन में सेव करने के बाद टोटल सेविंग $2,700 बनती है। और कस्टमर फ्री डिलीवरी हम करेंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी के साथ। इसके लिए आपको विजिट करना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी, ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है, BramptonAppliances.com। हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वॉक इन कस्टमर को जो एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि अप टू 40% तक का डिस्काउंट है उसका भी फायदा उठा सकते हैं। 905-450-2828 हमारा नंबर है जी, 905-450-2828 जी,
0: 905-450-2828। यहाँ पर अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शन में मैं क्विकली ये भी चाहूंगा कि कुछ हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज भी लिसनर्स के पास होती हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल्स अगर आप बताना चाहें, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी जब टेनेंट आता है, नया टेनेंट आता है, तो लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड द एंटायर सेटअप टू बी चेंज्ड, तो उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें
7: जी। बिल्कुल डेफिनेटली जी, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग घरों के लिए या रेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, सिंगल वॉशर चाहिए 649 में मिल जाएगा, सिंगल ड्रायर चाहिए 549 में मिल जाएगा, सिंगल डिशवॉशर चाहिए आपको किचन में $900,000 वाली $499 में मिल जाएगी, सिंगल स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1,200 वाला $799 का स्पेशल प्रमोशन पे आया है, 30 इंच अपराइट फ्रीजर के साथ फ्रिज चाहिए आपको तो वो भी $1,400 वाला $899 में स्टेनलेस स्टील का मिलेगा। कुछ भी होम अप्लायंसेस में चाहिए आपको तो बिल्ट इन किचन के साथ भी हमारे पास 40% का डिस्काउंट है, जिसमें बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वॉल ओवन, बॉश का बिल्ट इन माइक्रोवेव, बॉश कंपनी का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन जो है $16,000 वाला सिर्फ $9,900 में है, $6,100 आप बॉश के बिल्ट इन किचन पे भी सेव करेंगे। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी, 905-450-2828, 905-450-2828 जी,
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। दोस्तों मैं ये जरूर बता दूं कि जो डील्स हमारी कम्युनिटी को डेकेड्स हो गए, मतलब ये कोई 5-10 साल की बात नहीं है, डेकेड्स से जो डील्स हमें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस से मिल रही हैं, सुल्तान जी से मिल रही हैं फॉर टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री, आर कम्युनिटी नोज दैट। और जिस तरह से एक हर हफ्ते हर महीने हर त्यौहार पर फेस्टिवल्स पर अमेजिंग डील्स मिलती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने उतना ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस को सपोर्ट करना है, बिकॉज ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस ने हमें ऑलवेज अमेजिंग डील्स दिए। सुल्तान जी, टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या अमेजिंग डील्स है फॉर दिस वीकेंड?
7: सनी भाई, टीवी सेक्शन में फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है जी सैमसंग, उसकी वजह से सैमसंग ने एक्सक्लूसिव डील्स दी हैं अपने हाई एंड डीलर्स को, जिसमें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है जी इस वक्त। इसीलिए 85 इंच का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ 85 इंच QLED हाई एंड टेक्नोलॉजी सैमसंग ब्रांड में आपको $2,000 वाला स्पेशल प्राइस पे सिर्फ $1,299 में मिलेगा, $700 आप 85 इंच बिग स्क्रीन टीवी पे सेव करेंगे, क्योंकि सैमसंग पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है जी इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप को, तो इसको मिस ना करें, इसका जरूर फायदा उठाएं। इतनी प्राइसेस ड्रॉप कभी भी नहीं सैमसंग कंपनी में अपने हाई एंड टेक्नोलॉजी पे की, जितनी फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बिग स्क्रीन टीवी में ड्रॉप किया गया है, और वो भी आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इवन 55 इंच चाहिए सिर्फ $399 में मिल जाएगा, 65 इंच चाहिए सिर्फ 699 में मिल जाएगा, 79 इंच आपको मिलेगा, सॉरी 95 इंच, ये हमारे पास स्पेशल पे आया है जी सैमसंग का, 98 इंच जो $3,500 वाला सिर्फ 1999 में मिलेगा। सो 98 इंच द बिगेस्ट स्क्रीन फ्रॉम सैमसंग आपको मिल रहा है सिर्फ 1999 का, बोवेड एंड चिंकूजी पे, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। जैसे मैं हमेशा कहता हूं जी, $3,000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यों ना फिर 98 इंच बिग स्क्रीन टीवी वो भी 1999 का अपने घर में लगवाएं, और फीफा वर्ल्ड कप पे स्पोर्ट्स के शौकीन जो हैं इस स्पोर्ट्स इवेंट को बिग स्क्रीन टीवी पे एंजॉय करें। हमारे पास स्पेशल प्राइस है, स्पेशल डिलीवरी फ्री है, और स्पेशल ही आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
7: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। 905-450-2828, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर सीपी चटवाल सरबजीत गिल हमारे साथ है रियल एस्टेट की रियल अपडेट लेकर। एंड नंबर नोट करें 6478872707 या 416-627-4737। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, एंड ए वेरी हैप्पी सनी थर्सडे आपको और सभी सुनने वालों को।
1: जी, आप दोनों को भी। एंड सबसे पहले तो आपसे रिपोर्ट ले लेता हूं कि क्या रिपोर्ट आप लाए हैं इस हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, फिर सीपीजी की तरफ चलते हैं।
2: सनी, एक तो चीज सभी ने ये नंबर नोट किए होंगे और देखे भी होंगे, सुने भी होंगे ऑलरेडी, कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बेटर देन बिफोर है।
1: जी,
2: लाइक ए मच बेटर देन बिफोर। ठीक है, एंड प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है बायर्स के लिए, तो इट्स काइंड ऑफ ए ऑसम टाइम। And they are getting deals every day, okay. And I can see that excitement in the buyers, and that's reflecting in the number of sales also.
1: जी.
2: All over the GTA, the numbers are much much better than what it used to be before.
1: जी.
2: So, and I think Keyseller has adjusted a good way on the prices, and we have a one detached house, fully detached with a big lot size. अगर कोई भाई बहन अगर 750,000 की रेंज में देखता है, in the center of Brampton, close to all the things, they can call us.
1: जी, 416-627-4737 या 647-887-2707 पर। हमारे लिसनर का आपके लिए सवाल भी है। लिसनर पूछ रहे हैं कि कल शायद मैंने आई ऑल्सो केम अक्रॉस दिस ऑन सोशल मीडिया, देर वॉज अ ब्रैम्पटन प्रॉपर्टी फॉर अबाउट 1.3 million, जो कि शायद 800,000 के रेंज में बिकी है, अंडर 500,000 ऑफ द एस्किंग जो टेक्निकली जानी थी। उनका कहना है बेसिकली द लिस्टनर्स ट्राइंग टू एस्क कि ब्रैम्पटन में क्यों प्रॉपर्टीज जो हैं इतनी लोअर दैन द प्राइस सेल हो रही हैं, वेदर पावर सेल, वाई ब्रैम्पटन में सो मच ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर कमिंग अक्रॉस।
2: मेरे ख्याल से आई थिंक लिस्टनर जो बात कर रहे हैं वो एक वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर बात कर रहे होंगे। Yes, Brampton do have the opportunity, okay? But yes, Brampton is behaving in the same way. The all other places are behaving in the same way. Market mein jab aapne dekha hoga ki jab prices bahut upar ja rahe the, multiple offers the, to wo cheez jo hai wo Markham mein bhi thi, wo Scarborough mein bhi thi, wo East End pe bhi thi, wo Bowen Mill mein bhi thi, wo Pickering mein bhi thi,
1: ji,
2: aur wo IR mein bhi thi, jo do bar mujhe visit karne ka time laga tha। तो ये जो चीज थी वो यूनिवर्सली ऑल ओवर द जीटीए थी, तो अगर वो मार्केट में वो बिहेवियर है तो इस मार्केट में ये बिहेवियर भी ऑल ओवर है।
1: आपके हिसाब से कि ऐसा नहीं है कि प्राइमरली ब्रैम्पटन में ज्यादा
2: का सनी, जो देखिए मीडिया में काफी नाम आ रहा है, ठीक है, हम उस चीज को जल्दी बाय आउट करते हैं, ठीक है, कि ये चीजें आ रही है, ठीक है। यस, ब्रैम्पटन इज ए प्रेडोमिनेंटली इमिग्रेंट सेटलमेंट प्लेस, ठीक है, जहाँ पे ज्यादातर लोग पिछले लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं या 14 ईयर्स में आए हैं, जो सेटल हुए हुए हैं, ठीक है। एंड यस, दे हैव सरफेस लेवल इश्यूज, और समटाइम क्या होता है कि हम जल्दी जो है वो एक्साइटेड भी हो जाते हैं, एंड द सेम इज ट्रू ऑन द अदर वे अराउंड।
1: जी,
2: बट यस, एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्रैम्पटन की बात हो।
1: जी,
2: यू हैव द अपॉर्चुनिटी, बाकी वन इंडिविजुअल और मे बी लाइक टू इंडिविजुअल और फाइव इंडिविजुअल केसेस। Brampton is a kind of full of self-employed people, a lot of entrepreneurship hai, lot of excitement hai, lot of youth hai. Aapne Diljit Dosanjh ke show mein dekha hoga, to mere khayal se 70% Brampton hoga.
1: So, theek hai.
2: Not even one seat was empty. So people are excited, people are celebrating, and yes, there are some situations jo aap ये नहीं कह सकते कि जस्ट इट्स ओनली ब्रैम्पटन।
1: जी, एंड सीपीजी आपसे भी जो सरबजीत जी से पूछ रहे हैं कि किस तरह से आप ये समर की रिपोर्ट को आप देख रहे हैं, या क्या आपको लगता है कि कैसी रहेगी रियल एस्टेट मार्केट ओवरऑल जीटीए में?
3: देखो, जहां तक सेलर की बात है वो दिक्कत तो है ही है, जितनी जल्दी सेलर अपने आप को एडजस्ट करेगा या अपने आने वाले टाइम के लिए अपने वो रास्ते निकालेगा उतना उनके लिए बेटर है, अदरवाइज तो मार्केट तो डाउन ही आ रही है और बायर्स के लिए डे बाय डे अपॉर्चुनिटीज हो रही है, इसी करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है।
1: हाउ डू यू एक्सप्लेन जब आप कहते हैं कि सेलर अपने आप को एडजस्ट करेगा, अगर सेलर ने शायद कुछ अरसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को 1.2 मिलियन का देखा था, सो आपका कहने का मतलब है सेलर शुड एडजस्ट and readjust himself and be ready to sell the property for 950,000, taking a $250,000 hit.
3: तो लिया हुआ होगा तो उससे पहले वाला घर भी जो दो तीन लाख डॉलर प्रॉफिट पे ही बेचा होगा। राइट
1: जी जी,
3: तो इससे सारी बातें हैं उसका, और काफी बातों का आपकी बातें 100% सही है और काफी जगह पे सोल्यूशन नहीं भी है। काफी जगह पे सोल्यूशन नहीं भी है। आई एम लिटिल बिट आपको मैं जो हम फेस कर रहे हैं चीजों को, एवरीबॉडी इज अ डिफरेंट सिचुएशन, बट एक अभी एक और क्लाइंट थे उनके पास दो प्रॉपर्टियां थी, एक प्रॉपर्टी बहुत पुरानी ली हुई थी, एक बहुत महंगी ले रही थी, अफोर्ड नहीं हो रहा था, बट रेंटल इनकम के बेस पे उन्होंने पहली वाली प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस करके अब उनको $2,00,000 मिल गया
1: है। जी बिल्कुल। एंड सीपीजी कुछ लिस्टिंग्स भी जरूर शेयर करें, क्योंकि वेदर जहां पे अच्छा है, काफी ओपन हाउसेस हो रहे हैं, वीकेंड को काफी ओपन हाउसेस के बोर्ड्स नजर आ रहे हैं जीटीए में, तो लिस्टनर्स भी अगर चेकआउट करना चाहें प्रॉपर्टी, वट एवर मे बी इवन द फर्स्ट टाइम होम बायर्स माइट वॉन्ट टू जम्प इन टू द मार्केट एट दिस पॉइंट, क्योंकि द प्राइस इज राइट प्रॉबली।
3: सनी जी, एक तो हमारे बहुत ही प्यारा डिटैच घर हमने लिस्ट किया हुआ है फिनिश बेसमेंट सेपरेटर्स के साथ, हाई वे 10 एंड रेल आसन में 879 में लिस्ट किया हुआ, एंड वी कैन वेरी मेक ए वेरी गुड डील क्लोज टू 850। बहुत ही प्यारा ये डिटैच घर है, 3 बेडरूम का है, फुली लॉट ऑफ अपग्रेड्स है, बहुत ही बड़ा बैकयार्ड है, और उसके लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम बायर के लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ब्रैंडफोर्ड की तरफ कुछ चीज देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया घर बिल्डर्स से मिल रहे हैं, इन बिटवीन 580 से लेके 620 के अंदर आफ्टर रिबेट, तो आप हमको कॉल कीजिए, अभी हमने दो लोगों को वहाँ पे घर दिलाया है, तो वी कैन डू द बेस्ट, और काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स भी आ रही हैं, तो आप बैठो हमारे साथ एंड वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। अगर आपकी जॉब्स वगैरह प्रॉपरली चल रही हैं, हाँ ये जरूर कहूँगा, अगर आपका बजट मिलियन का है तो मिलियन का जो लेने की जरूरत नहीं है, आप 9 लाख का ही घर लीजिए।
1: जी, एंड जिसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जिनका 2 डेकेड का लंबा एक्सपीरियंस है, सीपी चटवाल, सरबजीत गिल, उनसे संपर्क करें, उनके एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा लें, एंड खासकर व्हेन यू आर गेटिंग 2 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज़ ऑन योर साइड, वेदर यू आर द बायर और द सेलर, दे रिप्रेजेंट यू एंड दे मेक श्योर कि भाई आपके निगोशिएशन टेबल पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की बचत कैसे होगी, इस चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हैं सरबजीत गिल, सीपी चटवाल। सरबजीत जी, कमिंग बैक टू यू, अगर आप कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहें।
2: सनी, मैं सभी लिस्टनर्स के साथ, और आई थिंक यू आर अ विटनेस टू दैट, कि मी एंड सीपी वी बोथ आर नॉट अपॉर्चुनिटी सेलर्स, रियल्टर्स।
1: बिल्कुल,
2: हर सीजन में वी आर आउट देयर, मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, वी आर आउट देयर टू शेयर द नॉलेज वी हैव एंड टू हेल्प द फैमिलीज।
1: जी बिल्कुल।
2: नाउ अब ये फैमिली के ऊपर है कि हुम दे वॉन्ट टू पिक।
1: जी,
2: व्हाट इज देयर क्राइटेरिया, बाय सेविंग $2,000 दे वांट टू लूज $200,000 और बाय दे वांट टू गेन ऑन $200,000।
1: एग्जैक्टली,
2: बाकी हर मार्केट के अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज एग्जिस्ट।
1: जी,
2: एंड जब इस तरह की मार्केट आती है, आई थिंक जिन लोगों ने पैसा बनाया, दे प्रोबेबली वेरी मच एग्री टू माई टॉक एंड कन्वर्सेशन, एंड दे आर नोइंग दैट that this is their time to make a lot of money also.
1: बिल्कुल सही बात है। And जी,
2: since अभी गर्मियों का मौसम है और सभी लोग आम खा रहे हैं, तो हमारे फादर साहब कहा करते थे कि अगर डाली पे आम अगर आपका पक जाए ना, तो बेहतर है कि उसको तोड़ के खा लो, नहीं तो अपने वेट से या तो गिर के फट जाएगा, ठीक है, या Parrot will be saying thank you to you.
1: हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, जब the price right है, first time home buyers को खासकर अच्छी sweet deals मिल रही हैं, इस वक्त का फ़ायदा बिल्कुल लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आगे क्या होगा, बिकॉज आगे किसी ने देखा नहीं है, जो पीछे रह गया उस अब वो बेमायने हैं वो चीज़ें। बात ये है कि सरबजीत गिल, सीपी चटवाल को कॉल करें फॉर रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स, और जहाँ पर इतना एक्सपीरियंस है वहाँ पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करवा के देंगे सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, 6478872707 या 416-627-4737, 416-627-4737 हमारे एक्सपर्ट्स का नंबर है, सीपी चटवाल एंड सरबजीत गिल। जेंटलमैन, यहाँ से यहाँ पर आप दोनों से इजाज़त लेते और मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी।
2: थैंक यू सनी, आई विश एवरीबॉडी एंजॉयबल समर टाइम।
1: जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय द डे, एंजॉय द वीक एंड व्हाटएवर्स लेफ्ट ऑफ इट एंड द वीकेंड। और सरबजीत गिल सीपी चटवाल की तरफ से कहते हैं सोनू निगम, जस्ट चिल, फिल्म वॉज मैंने प्यार क्यों किया, एंजॉय द सॉन्ग, आई विल सी यू टुमारो फ्राइडे, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर, और रेडियो टोरंटो कनाडा के आफ्टरनून ड्राइव टाइम की शुरुआत हो चुकी है। 2 बजे से 3 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और खूबसूरत से गानों के साथ, बॉलीवुड की गपशप के साथ, शेर व शायरी के साथ, हमारे एडवर्टाइजर्स के अच्छे अच्छे से मैसेजेस के साथ हम रहेंगे आपके साथ साथ। नंबर टू रीचर्स 416-303-3639। वेलकम वंस अगेन।
6: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज़ आमिर तोफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड डॉल्स, दिस इज द लवी डवी शो, एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस आफ्टरनून।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरडी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: मम्मा, why don't you go to work now?
9: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
10: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
9: क्या वो मदद करेंगे?
10: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल

0: से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
1: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
0: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
1: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
2: और साहब बात शुरू करते हैं आपकी हेल्थ से, आपकी सेहत से, इससे बेहतर, इससे आगे, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आपके लिए कुछ नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और उसके लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी अद्वियात, ऐसी दवाइयां इस्तेमाल कीजिए, ऐसा तरीका इलाज इस्तेमाल कीजिए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस शख्सियत के साथ हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, इंडिया में तजुर्बे की बात करें, सर्टिफिकेशन की बात करें या कनेडियन एक्सपीरियंस, कनेडियन सर्टिफिकेशन की बात करें, इनके पास एक लंबे अरसे का तजुर्बा भी है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ डील करते हैं, सीनियर हैं, आपकी नब्ज देखेंगे यानी आपकी पल्स देखेंगे, आपको बता देंगे कि मसले की नौयत क्या है। ज्वाइन किया है होम्योपैथी स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट कुलदीप जी ने, वेलकम करते हैं सर आपको।
3: आमिर जी आपको सारे नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून।
2: शुक्रिया बहुत बहुत। आज किस मुद्दे पर बात करेंगे आप?
3: आज देखिए मसले तो बहुत हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा अर्थराइटिस के बारे में, पेन के बारे में, उसके बारे में, क्योंकि अर्थराइटिस लोगों को कंफ्यूज रहते हैं, अर्थराइटिस डॉक्टर ने अर्थराइटिस कह दिया बस परेशान हो जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उसको पहले तो हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए यह है कि हमको पूरी जिंदगी यही काम करते हो गए, पूरे नॉर्थ अमेरिका में कोई भी इतना पुराना होम्योपैथ नहीं है कि जो जो है करीब 50 साल, लगभग 50 साल होने वाले हैं हम। तो आपको कोई भी मसला है, पेट का इशू है, अल्कोलाइटिस है, IBS है, कोई आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पाइल थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कोई एलर्जी है, किसी पर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और थोड़ा कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्किन के इशू हैं, स्लीप एपनिया है, खास करके बच्चों को ऑटिज्म की जरूर बात करेंगे, पूरी दुनिया से हमारे पास ऑटिज्म के बच्चे हैं, और जिनको कम प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, ऐसे ही हर मसले का यही है। ठीक है, हम थोड़ा सा आप हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए टॉपिक ये है कि अर्थराइटिस, अर्थराइटिस एक मेडिकल वर्ड है, ये अर्थ मीन जॉइंट, आर्थराइटिस मीन इंफ्लामेशन। देखिए इसके बहुत से मसले होते हैं इसमें, जो अर्थराइटिस के जो अर्थराइटिस में आपका जो हो सकता है आपको जो कोई इन्फ्लामेशन हो, आपके लिगामेंट में प्रॉब्लम हो, टेंडन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसमें बहुत कोई आपका मतलब इसमें 100 तरह की अर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बैक पेन, कार्पेटिनल सिंड्रोम, फाइब्रोमाइलिया, गाउट जैसे है, इसमें जो है आपको यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, ल्यूपस है, और आपका ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सब जो है बैक पेन है, बैक पेन में सियाटिका पेन बहुत कॉमन है लोगों में जो है, ये बहुत लोग परेशान रहते हैं बीमारी से जो है। और जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये ऑटोइम्यून डिजीज है।
2: अच्छा।
3: लेकिन हमारे पास राइट टाइम पे राइट काम करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं हमारी दवाइयों से जो है। कभी कभी तो आमिर जी हम शो करते हैं कि ये होम्योपैथी से बेस्ट कोई दवाई नहीं है, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसकी बीमारी दवाई का जो है, बहुत परमानेंट इलाज है हर बीमारी का जो है। हमारा नंबर हमेशा याद रखें 647-818-0055-647-818-0055 पर कभी भी कॉल करके आ सकते हैं। एवरी डे हमारी क्लिनिक होती है 11 to 7, और यदि आपका बेनिफिट है अपने बेनिफिट भी चेक कर लें, बेनिफिट भी हम लोग यूज कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही, यहाँ नंबर है, ये नंबर मिलाइए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन है, पट्ठों में दर्द रहता है, गर्दन में खिंचाव रहता है, रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का इशू है, सीनियर हैं, माहिर हैं, तजुर्बाकार हैं, ये हैं कुलदीप जी होम्योपैथी स्पेशलिस्ट 647-818-0055-647-818-0055 5555। कुलदीप जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
4: बड़ा प्यारा सा गाना है निकाह फिल्म का जो लाइनअप किया है आपके लिए। कहते हैं मायूस चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, यादें भी कमाल हैं फिर जिंदा कर जाती हैं, बस इन्हें चाहिए फुर्सत के दो पल, यादें भी कमाल हैं दौड़ी चली आती हैं, कभी खुशियां तो कभी गम याद दिलाती हैं, यादें भी कमाल हैं आंखें भिगा जाती हैं, गुजर जाता है बीते वक्त की गलियों में, गुजर जाता है दिन बीते वक्त की गलियों में, यादें भी कमाल हैं लम्हे चुरा ले जाती हैं, बिखरे हुए मन को एक नई उम्मीद देकर आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखा जाती हैं, ये यादें भी ना कभी कभी जीना सिखा जाती हैं।

0: साहब, जैसे हालात चल रहे हैं दुनिया में, खास तौर पर यहाँ कनाडा में जहाँ हम रहते हैं, ओढ़ना बिछोना है ये। लेकिन क्या अगर आपको पैसा मिले, और ऐसा पैसा मिले जो लौटाना भी ना हो, तो विल यू से नो टू दैट? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए पैसा है, ग्रांट है, जो आपको वापस नहीं करनी, लौटानी नहीं है, और उसके लिए टाइम बहुत कम है। हो सकता है पॉलिसीज़ बहुत जल्द बदल जाएं, तो फिर आप पछताते रह जाएंगे। और फंडिंग कितनी मिल सकती है आपको, यानी ग्रांट कितनी मिल सकती है? 40,000 से $1,00,000 तक की ग्रांट है और लोन है, जिसमें आधा लोन और आधी ग्रांट। मान लीजिए आपको $50,000 भी ग्रांट का मिले, जो कि आपको लौटाना नहीं है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है आजकल के दिनों में कि आपको $50,000 का वो पैसा मिले जो आपको वापस नहीं करना है। हमारे साथ निभा रहे हैं नागपाल, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। सभी को सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।
0: तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज कोई शख्स जो मेरा प्रोग्राम सुन रहा है इस वक्त, इनरोल कराना चाहे, ये फंडिंग लेना चाहे 50,000 की, 40,000 की, 30,000 की, तो उसका तरीका क्या है?
1: पहले तो आपको मुबारक, आपको इतना अच्छा टाइम मिला।
0: शुक्रिया बाबा,
1: दोपहर का।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: एंड लोगों को शायद पता ना हो कि आप कितने पुराने हैं इस फील्ड में। लगो कि नहीं, नई आवाज सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुनने में। उनको ये नहीं पता होगा बंदा कितना ट्रेनर, कितने सालों से हम आपके साथ और सेशन से भी रहते हैं टाइम तक, राइट?
0: जी बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल।
1: थैंक यू सर जी। अब इसमें ये चीज है कि लाइक गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स है हमारे पास, फुली ऑनलाइन है, घर के कंफर्ट से आप करते हैं, 2 से 3 घंटे आप लगाते हैं मंडे टू फ्राइडे, फुली ऑनलाइन है, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, कोई कैच भी नहीं है, और आप स्किल डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे करते हैं डायरेक्टली टू द कॉलेज, एंड आपके खाते में 30,000 से लेके $100,000 की फंडिंग आती है, जिसमें से आज की डेट में हाफ पोर्शन ऑफ द अमाउंट क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स इसमें, और जो बाकी लोन है वो भी बहुत आसान शर्तों पे, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, कोई क्रेडिट चेक नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, हमारे 30 इयर्स भी और 75 इयर्स भी जो कि पेंशन पे हैं। तो आप अगर पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, एंड आपकी इनकम मेन थिंग इनकम अगर आपकी $70,000 से कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, क्योंकि अकेडमिक ईयर चल रहा है 25-26, इस पे 24 का एनओए देखा जाता है, तो ही आप हमें कॉल करें, तो ही आपको इसका एडवांटेज है सिर्फ।
0: बिल्कुल सही। अगर आपकी आमदन, आपकी इनकम 70,000 सालाना से कम है, तो बात कीजिए, आप भी 40,000-45,000 डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली एंड सर्कमस्टांसेस आपको मिल सकता है। नंबर ये अभी मिलाएं, अभी इनरोल करें, ये बहुत कम वक्त के लिए रह गया है मामला। हो सकता है बहुत जल्द पॉलिसी चेंज हो और आप फिर ग्रांट ना ले सकें, आपको सिर्फ लोन ही मिले। ये है नंबर 6474732207। नंबर दोबारा दे रहे हैं, 70,000 तक की ग्रांट मिल सकती है, अभी बात कर लीजिए, नागपाल जी डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। 6474732207 नंबर और भी देंगे आपको। और अगली बात मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं नागपाल जी, 70 साल 72 साल 75 साल उम्र है, और इसके अलावा एलिजिबिलिटी बताइए कि कौन अप्लाई कर सकता है ये ग्रांट?
1: हाँ जी, सो इसमें अगर आपकी एज लाइक एज का कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जी, अगर आपकी एज 75 भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो लाइक जब गवर्नमेंट डेंटल केयर बेनिफिट देती है, चाइल्ड बेनिफिट देती है, $1 a day care, $10 a day care देती है, हमें लगता है ठीक है। जब मैं कहता हूँ एजुकेशन में गवर्नमेंट फंडिंग करती है, कुछ लोगों को लगता है कैच है, कोई कैच नहीं। जब गवर्नमेंट यूक्रेन को $40 बिलियन मतलब 40,000 मिलियन दे सकती है, गवर्नमेंट जेंडर इक्वालिटी में 965 मिलियन बाहर के देशों में दे सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: इन्होंने दिया है 8.2 मिलियन, क्यों दिया है?
0: क्यों दिया है?
1: चावल की खेती में जेंडर इक्वालिटी के लिए वियतनाम को $8.2 मिलियन दिया गवर्नमेंट ने। ये पूरा बजट 96 गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। हर साल 7,000 मिलियन बाहर फूकते हैं, 7,000 मिलियन का बजट है उसका। गवर्नमेंट इतनी बकवास चीजों पर इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट जब एजुकेशन में टैक्स कर पैसा लगा रही है, हमें लगता है भाई साहब कुछ कैच है, कुछ कैच है। देयर इज नो कैच इन इट। आप आज एनरोल करें एंड आप 30,000 to 100,000 की फंडिंग को अपने अकाउंट में हासिल करें। हम 7 years से बिजनेस में हैं, कोई कैच नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं।
0: बिल्कुल सही, ये फंडिंग दिलाने की सर्विसेज हैं, टाइम लगता है, स्टाफ बैठ के काम करता है, ये सारा एक प्रोसेस होता है, तो इसमें आपकी फीस कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस या जो भी आप उसको कह लीजिए?
1: इसमें क्या कहते हैं, पहले तो हम उस पर आते हैं कि आपका एस्टिमेट कितना बनता है
0: जी।
1: अगर फैमिली ऑफ फोर है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, फुली ऑनलाइन आसान से कोर्स करते हैं जिसमें असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, और तो उनको उनके खाते में घर के कंफर्ट से आराम से ऑनलाइन क्लास लगाते हुए $80,000 बन जाता है।
0: अरे वेरी नाइस, बहुत अच्छा,
1: बिल्कुल जी नाइस है। अब इसमें से $40,000 नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स पोर्शन, जो रेस्ट $40,000 है वो 1 साल तक 0% पे, और 6 महीने बाद आपने जब पे करना स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक 1.5 साल बाद आप पे करना स्टार्ट कर रहे हो उस $40,000 को, 10 साल का ब्याज उस $40,000 पे सिर्फ $4,000 है, क्योंकि वो लोन 2.5% पूरे साल के ब्याज पे मिल रहा है आपको।
0: बिल्कुल सही,
1: बिना क्रेडिट चेक के, बिना कोलैटरल के, बिना सिक्योरिटी के आपको लोन और ग्रांट मिल रहे हैं, और आपको स्किल भी आप हासिल कर रहे हैं, मतलब तालीम भी हासिल कर रहे हैं
0: जी। बिल्कुल सही,
1: मुकम्मल फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करते, मेरे में नहीं करते।
0: बिल्कुल सही, ये बताइए कि ये कौन कौन एलिजिबल है, स्टेटस क्या होना चाहिए इसके लिए कनाडा में किसी का ये ग्रांट लेने के लिए?
1: वो अपने आवाम के लिए यही ये चीजें लेके आती है, तो आपके पास स्टेटस PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन का होना चाहिए, एंड अगर आपकी इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे 70,000 से कम है, आपको पता ये चीज गवर्नमेंट जैसा कि डेंटल केयर बेनिफिट भी है, 90,000 से अगर आपकी इनकम जाती है ऊपर, आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए, राइट?
0: बिल्कुल सही,
1: सेम थिंग ये चीज है कि इस देश में जो बेनिफिट है वो मीडियम एंड लो इनकम फैमिलीज को ही है, अमेरिका में उल्टा है, अमेरिका में अमीरों को ज्यादा बेनिफिट है, यहाँ पे अगर आपकी इनकम कम है तो ही एलिजिबल है गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए। तो आप हमें कॉल करें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड, सिंगल मदर, आपको अच्छी तरह ये सूट करता है, और कोई कैच नहीं है जी। हमारी फीस काम होने के बाद फंडिंग किसके अकाउंट में आती है, आपके अकाउंट में कब आती है, कल आ जाएगी नहीं आएगी, 30 to 90 days में आपके अकाउंट में फंडिंग आती है
0: जी।
1: और लास्ट वीक 34 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है।
0: वेरी नाइस,
1: जब फंडिंग गिरती है उसके बाद हमारा स्टाफ कॉल करता है, सर हमारी फीस कितनी, $199 to $499 है जी, कोई
0: वेरी नाइस बहुत अच्छा,
1: और तब अपनी ईमानदारी से आप फीस देते हैं काम होने के बाद, शुरू में कुछ लेते ही नहीं आपसे।
0: बिल्कुल सही, कुछ नहीं देना है आपको, काम हो जाएगा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 40,000, 45,000, 50,000 ग्रांट का, उसमें से आपने 100, 200 से शुरू होती है, 400 पे खत्म होती है, डिपेंड्स अपॉन द फंडिंग। ये रहा नंबर, नोट कर लीजिए, अभी कभी बात कीजिए इनके ऑफिस में, 437-264-3175 नंबर दोबारा दे रहे हैं, नागपाल जी के दफ्तर में बात कीजिए, पूरी कंसल्टेंसी देंगे, फोन पे बता देंगे कि रफली इतना पैसा आपका बन सकता है, फ्लैट फीस देनी है फंडिंग मिल जाने के बाद, और फंडिंग कहां आएगी, आपके बैंक में, आपके पर्सनल अकाउंट में आएगी, 437-264-3175। नागपाल बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू।
2: बच्चों का बढ़िया फ्यूचर चाहते हैं, रिटायरमेंट पर बेहतरीन और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहते हैं, बीमारी या डिसेबिलिटी की सूरत में फैमिली की प्रोटेक्शन चाहते हैं, या फिर सुपर वीजा इंश्योरेंस चाहते हैं, सेविंग कैसे करनी है और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, इन सब के लिए तो सिर्फ लवजोत कौर को ही फोन मिलाना है। RESP RRSP ट्रेवल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए कॉन्टेक्ट लवजोत कौर, जो मेजर कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करती हैं और आपको बेस्ट रेट्स दिलाती हैं। कॉल कीजिए लवजोत कौर, 416-877-8134। इट्स 416-877-8134।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
3: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
5: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
6: रेडियो टोरंटो कनाडा और आप इंजॉय कर रही हैं खूबसूरत सी शाम की ड्राइव। 2:33 इज द टाइम। मैं हूं शिवानी आपके साथ। और आमिर, जो हमारी वेजीज और फ्रूट्स होते हैं वो हमें बहुत फ़ायदा देते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ वेजीज और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो खुद ही अपनी शेप से हमें बता देते हैं कि वो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में फ़ायदा देते हैं, हमारा काम आसान कर देते हैं। इतनी कुछ याद रखना पॉसिबल होता नहीं है। और वैसे भी फ्रूट्स और वेजीज तो मजबूरी में खाई जाती हैं, उनका याद रखना कोई शिद्दत से याद करता नहीं है। केक हो, पेस्ट्रीज हो, उसके बारे में सबको याद रहता है कि उसके टॉपिक कौन सी हमें पसंद है, कौन सी नहीं पसंद रहेगी, लेकिन नॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब अगर हम कैरेट्स की बात करें, अगर हम गाजर की बात करें, तो अगर हम उसको राउंड में कट करेंगे गाजर को, तो उसकी जो शेप है वो एक ह्यूमन आई जैसी होती है। आपने नोटिस किया होगा
7: गाजर की।
6: जी, तो और ये फ़ायदा भी हमारी सबसे ज़्यादा जिस बॉडी के ऑर्गन को पहुँचाती है वो आइज़ होती हैं।
7: अच्छा,
6: आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है गाजर। अगर आप रोज़ एक वन स्मॉल कप ऑफ कैरेट का जूस पीते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है, आँखों की आपकी शेप बहुत अच्छी होती है, आँखों की खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा
7: तो फिर बहुत सी गाजरें खाती होंगी ना। ये गाजरों का कमाल है,
6: मतलब बचपन में मम्मी ने बहुत सारी खिलाई थी। तो वो अब तक फायदा दे रही है। अगर आपके पास सच मानू तो थैंक यू सो मच।
7: नहीं, मेरा मतलब है कि अगर गाजरों की वजह से है ये सब या नेचुरल है, मैं ये जानना चाहता हूँ दरअसल। दिस इज माय क्वेश्चन, इज इट नेचुरल और इज इट बिकॉज ऑफ कैरेट्स?
6: आई हैव नो वर्ड्स टू से।
7: जी
6: जी, तो अगर हम दूसरे फूड पर आए, वेजी पर आए, तो हम टमेटोज़ की बात करते हैं।
7: अच्छा।
6: हम एक टमेटो में 4 चैम्बर्स होते हैं, एक 4 चैम्बर्स होते हैं, आपको पता है। अगर हम उसको वर्टिकली और जिस तरीके से भी कट करें, 4 चैम्बर्स होते हैं और इसकी शेप बिल्कुल दिल की तरह होती है, हार्ट की तरह होती है, अगर आप मेरे कंप्यूटर पर देख
7: सकते हैं। सही कहा।
6: और देखिए, आप में मुझ में फ़र्क है कि मैं हर चीज़ पढ़ के बोलती हूँ और आपको दिखा दिखा तो उसका अपना फायदा होता है। और आप
7: सबूत के साथ बोलती है,
6: आपको हर चीज पैदाइशी याद है, इसलिए वो हम दोनों का काम चल जाता है। जो एक टमेटो हैज 4 चैम्बर्स एंड एकदम दिल की तरह होता है और लोडेड होता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हमारे हार्ट और ब्लड के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
7: अरे वाह।
6: तीसरी चीज हम बात करते हैं अखरोट की, जिसको हम वॉलनट कहते हैं। इसको आप अगर तोड़ेंगे तो उसकी शेप बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह होती है, 100% इट लुक्स लाइक अ ब्रेन. और मोर देन 3 dozen न्यूरो ट्रांसमिटर से इन्हांस करता है हमारे ब्रेन के फंक्शन.
7: अरे वाह क्या कहने.
6: तो सुबह एक थोड़ा से एक बोल में थोड़े से कैश्यूज खाइए, थोड़े रेजन्स लीजिए, नट्स लीजिए. ब्रेन ज़्यादा तेज करने के लिए भर भर के ना खाइए.
7: अच्छा,
6: बहुत थोड़ा सा.
7: अच्छा, थोड़ा सा खाना.
6: एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज गुड.
7: तो इसका अगर ओवरडोज हो जाए अखरोट का तो फिर क्या होता है, मतलब ब्रेन बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए.
6: हाँ, फिर दिमाग ही दिमाग नजर आता है. और अगर वो भी खाली पेट खा लिया आपने तो खाली दिमाग शैतान का घर है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीन्स की बात करते हैं. और अगर हम किडनी बीन्स की बात करें, जिसको हम राजमा कहते हैं, उसकी शेप बिल्कुल किडनी की तरह होती है, सभी जानते हैं. और किडनी हमारी बॉडी में क्या अहमियत रखती है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल. किडनी के फंक्शन को अच्छे से बनाए रखने के लिए, हमारी किडनी को के इम्प्योरिटीज को हील करने के लिए हर तरीके की बीन्स बहुत फायदेमंद हैं.
7: बिल्कुल सही.
6: तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए. ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं तो एटलीस्ट एवरी अदर डे आप ज़रूर शामिल कीजिए.
7: तो क्या जितने भी मासूम शोहर हैं दुनिया में, क्या मैं उनको ये मशवरा दे सकता हूँ कि अपनी बीवियों को अखरोटों से दूर रखिए?
6: अखरोटों से दूर दूर रखिए और टमाटर के चारों चैम्बर्स उनको दिखा दिखा के खाइए भी खिलाइए भी, जिससे कि दिल आपके आसपास रहे
7: और आपका दिल भी मजबूत रहे. आप सुन रहे हैं लवी डवी शो शिवानी और आमिर के साथ. स्टे ट्यून्ड.

0: Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
1: रेडियो टोरंटो कनाडा का ये शो आपके लिए लेकर आ रही हैं और पेश कर रही हैं आमिर और शिवानी। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में आज हम बात करेंगे कॉरपोरेट हाउसेस में डिजिटल मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे की
2: जी बिल्कुल।
1: और आमिर हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं और क्यों ये ज़रूरी है, कैसे ये पॉसिबल होगी और कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, आइए जानते हैं आमिर से। जी,
2: एक है कॉरपोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आपकी ब्रोकरेज है, आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है और वहाँ 5 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और सभी कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मेकिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया सीखना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, मेटा एड्स सब सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं, तो हमारी टीम आपके प्रेमिसेस पे, आपके ऑफिस में आएगी और ट्रेनिंग डिलीवर करेगी। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। विल कम डाउन टू योर प्लेस टू डिलीवर दैट ट्रेनिंग। तो उसके लिए आप कॉल कीजिएगा 416-303-3639। देखिए, पूरे ऑफिस में, पूरे दफ्तर में मान लीजिए 15 लोग काम करते हैं, उसमें से किसी एक ने अगर सीख लिया कंटेंट प्रोडक्शन, अपना काम वो खुद करने लगा, मार्केटिंग का बजट 0 हो गया, खुद अपना कंटेंट क्रिएट किया, पोस्टर डिज़ाइन किया, रील्स बनाई, उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे प्रमोट किया, तो वो एक बंदे की एफिशिएंसी है, एक बंदे का पैसा है। अगर आप अपनी पूरी ब्रोकरेज के लिए इस ट्रेनिंग का इंतजाम करवा लें तो मुझे लगता है कि आपकी एफिशिएंसी तो 100 गुना ऊपर जा सकती है। Everybody will be an expert content creator. आने वाला टाइम याद रखिए डिजिटल मीडिया का है। हम आपके स्टाफ को आपके प्रमिसेस पे आके, आपके ऑफिस में आके, आपके बोर्ड रूम में आके, 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, ट्रेन करेंगे और वो अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करेंगे। आपकी ब्रोकरेज को भी फायदा होगा, ऑफिस को भी फायदा होगा और इंडिविजुअली उन लोगों को भी फायदा होगा जो ट्रेन होंगे।
1: जी, और बिल्कुल सही आमिर। और देखिए, वैसे भी हम, आप जब क्लासेस लेते हैं और अपने अकेडमी में डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स की, तो भी उसकी फीस बहुत कम है एज कम्पेयर टू जितना आप सिखाते हैं लाइव भर के लिए। उनको ट्रेन करते हैं और उससे भी कम आपको ये डिस्काउंट में पड़ जाएगा अगर आप एक बल्क में हम लेते हैं करीब। बस यही उसका एक कंडीशन ये है कि 8 से 10 लोगों की टीम होनी चाहिए। आपके प्रमिसेस में आके आपको ये क्लासेस दी जाएंगी, आपकी फैसिलिटी में आके आपको ये क्लासेस दी जाएंगी और कवर वो सारे मॉड्यूल्स होंगे।
2: जी बिल्कुल, सारे मॉड्यूल्स कवर होंगे जिसमें डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन, कंटेंट प्रोड्यूस कैसे करना है और उसको डिजिटल मीडिया पे पॉपुलर कैसे करना है, रिकग्नाइज कैसे कराना है, लोगों के दिमाग में रजिस्टर कैसे करना है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख की तादाद में फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है, यूट्यूब चैनल कैसे सेटअप किया जा सकता है और उसकी सब्सक्रिप्शन और फॉलोइंग कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये चीदा चीदा बातें हैं इस ट्रेनिंग के हवाले से। ज़रूर कॉल कीजिएगा 416-303-3639। डिजिटल मीडिया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आपके बोर्डरूम में, आपके ऑफिस में, आपकी फैसिलिटी पे आके हमारी टीम आपको ट्रेन करेगी। 416-303-3639। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।
1: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।

0: राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आमिर और शिवानी के साथ आप हैं रेडियो टोरंटो कनाडा के शो में। 2:52 का वक्त हो चला है। अब हमारे साथ आमिर एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं 2012 से, और जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में भी बता दूं, वो ये बेसमेंट को लीगल कराने में माहिर हैं। अगर आप बेसमेंट लीगल कराना चाहते हैं तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ओंटेरियो में सिंगल हाउसेस को कई यूनिट्स में बदलना, मल्टी यूनिट कन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, एक शानदार रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे साथ विवेक गुप्ता जी जुड़ रही हैं। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू वेलकम विवेक जी। और नंबर आमिर हम उनको बताएंगे विवेक जी का हमारे लिस्टर्स को।
3: 6479731733।
2: विवेक जी कैसे हैं आप? वेलकम टू लवी डवी शो।
4: थैंक यू वेरी मच शिवानी जी हैविंग मी हियर एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स।
2: गुड आफ्टरनून। और वैसे तो हम जानते हैं विवेक जी कि आप 2012 से ओंटेरियो में लीगल रूप से बेसमेंट अपार्टमेंट और मल्टी यूनिट कन्वर्जन्स में एक्सपर्ट हैं, और ना सिर्फ आप इसके लिए ज़रूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग परमिट डिज़ाइनर का काम भी खुद ही करते हैं, जिसमें शामिल है स्विमिंग पूल, डेक, गराजेज और घर का एक्सपेंशन, ये भी शामिल होता है। अपने इन्वेस्टमेंट को अगर आप सेफली और लॉफुली अंजाम देना चाहते हैं तो यही नंबर आपके काम आ सकता है। 6479731733। जी विवेक जी, हम बात करना चाहेंगे आपसे सिंगल हाउसेस को कई यूनिट्स में बदलना, जिसको हम मल्टी यूनिट कन्वर्जन्स कहते हैं। क्या है ये मल्टी यूनिट कन्वर्जन्स और आपके जरिए कैसे हमारे लिसनर्स इसका हिस्सा बन सकते हैं?
4: जी देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्डिंग कोड का बहुत इस्तेमाल होता है और उनका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारे घरों में हमारे पास बहुत सारे कमरे होते हैं जिनको हम किराए पर दे सकते हैं।
2: अच्छा।
4: लेकिन अगर वो घर एक ही घर के लिए डिज़ाइन किया गया है तो उनको कमरों को अलग अलग किराए पर देना एडवाइजेबल नहीं है। उसमें बहुत फायर हैजर्ड्स होते हैं और किसी भी इंसिडेंट में उसमें बहुत पेनल्टीज हैं और जेल भी हो सकती है होम ओनर्स को। तो हम एडवाइस करते हैं कि उन घरों को अगर किराए पे चढ़ाना है तो उन्हें प्रॉपरली या तो लीगल बेसमेंट ही करा लें, या फिर अगर उसमें और यूनिट बना सकते हैं ट्राइप्लेक्स या फोरप्लेक्स, या सभी कमरों को लीगली रेंट करना है तो उसके लिए अलग बिल्डिंग कोड है जिसके हम स्पेशलिस्ट हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और बिल्डिंग परमिट भी करते हैं। हम कहते हैं कि आप उनको आप लीगल करा के फिर आप किराए पे दें, इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी की जो जोनिंग है वो चेंज हो जाती है। सिंगल यूनिट से आपका घर जो है वो एक लीगल कमर्शियल घर बन जाता है, जिससे उसकी वैल्यू भी बहुत मार्केट में बढ़ जाती है और उसमें आपको किराया भी अच्छा मिलता है और आपके रिस्क भी सारे कवर होते हैं। इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट आपको इंश्योरेंस से पूरा पेमेंट आपको मिलता है। हम उस घर में जब डेवलपमेंट करते हैं तो हम एडवाइस करते हैं कि इसमें आप स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, हम उसका बिल्डिंग परमिट भी करते हैं, उस घर में एडिशन भी बना सकते हैं पूरे तौर पे, कोई 1000-2000 स्क्वायर फुट अगर उसको घर को बढ़ाना है, सेकंड फ्लोर पे बढ़ाना है या गैरेज के ऊपर बढ़ाना है तो वो भी हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करके उसको बढ़ा देते हैं और घर को इस तरीके से लीगल तरीके से उसको हम बिल्डिंग परमिट और कंस्ट्रक्शन लेके बढ़ाते हैं कि वो फिर आपके आपकी प्रॉपर्टी का आपके इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सेफ रखता है।
2: जी बिल्कुल, यहाँ नंबर ज़रूर बताना चाहेंगे 6479731733। बहुत ज़रूरी बातचीत हमारे साथ कर रहे हैं विवेक जी। आप सभी जो लिसनर्स सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर बातचीत करना चाहते होंगे और अपना घर इस तरीके से लीगल कराना चाहते होंगे। जल्दी से जल्दी नंबर मिलाइए 6479731733। जी विवेक जी।
4: हाँ, ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं आजकल, जैसे प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं और उनकी अफोर्डेबिलिटी में बहुत डिफिकल्टी आ रही है स्पेशली फॉर न्यू बायर्स, तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो न्यू बायर्स हैं और वो इमीडिएटली एक सिंगल घर खरीद के उसको फिर वो मल्टीपल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको फिर किराए पे चढ़ा के उनकी फिजिबिलिटी भी अच्छी हो जाती है और उनकी प्रॉपर्टी भी अच्छी हो जाती है, वैल्यू भी अच्छी हो जाती है। बहुत सारे घरों में तो हमने ऐसा भी करा है कि हमने उसको उसको हम बोलते हैं मल्टीपल जोनिंग, जिसमें हम नीचे कमर्शियल करा देते हैं, जैसे डॉक्टर्स ऑफिस या मेडिकल ऑफिस करा देते हैं, और ऊपर हम रेजिडेंशियल सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग परमिट करा देते हैं। तो एक ही घर में आप कमर्शियल काम भी कर सकते हैं और उसमें आप रह भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को लेके और उसको आप डेवलप भी कर सकते हैं और उसको आप अफोर्ड भी कर सकते हैं।
2: क्या बात है। तो इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं और फ़ोन पे उतना ही बताया जा सकता है टाइम क्रंच की वजह से, लेकिन डिटेल जानकारी के लिए राइट अवे आप कॉल कीजिए और इन सारी दिक्कतों से छुटकारा पाइए जो आपको आगे चल के रिस्क दे सकती हैं। 6479731733 विवेक गुप्ता जी का नंबर है 6479731733। विवेक जी आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू,
4: थैंक यू वेरी मच शिवानी,
2: थैंक यू जी।
3: यहाँ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है इस पैगाम के साथ कि जिंदगी इतनी मुख्तसर है, सारी की सारी मोहब्बत में गुजरे कम है और हम इसको नफ़रत में झोंक देते हैं। मोहब्बत बांटिए, आप खुश रहेंगे। नहीं, यू आई लव यू।
5: तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे भीगे भीगे।
2: आमिर और शिवानी को दें इजाज़त, कल होती है मुलाकात। 416-3033639 416-3033639 नमस्कार।

0: शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी,
1: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव। शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी।
0: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों का वेलकम करती हूँ मस्ती की रेल गाड़ी पर। आज है थर्सडे जून 4th और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, और अगर अभी तक वैसा नहीं रहा तो चलिए अगले कुछ पलों को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर पल हमें एक नया मौका देती है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। और आज का पॉजिटिव विचार कहता है कि खुश रहने के लिए सब कुछ होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो है उसकी कद्र करना जरूरी है। तो शिकायतों को थोड़ा विराम दीजिए, ब्लेसिंग्स को गिनिए और अच्छे विचारों को अपने साथ रखिए। आज का म्यूजिक भी रहेगा शानदार, बातें होंगी दिल से और वाइब्स रहेंगी फुल पॉजिटिव। और शुरुआत में रुक करते हैं हमेशा की तरह आज भी ताजा खबरों का मस्ती की रेलगाड़ी पर। एंजॉय।
0: शान एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया।
3: नमस्कार, शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। शायर बशीर बद्र साहब का एक शेर है, वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। इन्हीं अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का, और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने पीएम मोदी से मुलाकात की।

0: के बीच इन दिनों भूरे रंग के एक आवारा कुत्ते को लेकर विवाद छिड़ गया है। इसका नाम कैरामेलो है। ब्राजील के लोग इस कुत्ते को देश की पहचान मानते हैं। उनका कहना है कि ब्राजील में कैरामेलो उतना ही खास है जितना फुटबॉल और सांबा गीत। मैक्सिको ने इसी साल अप्रैल में कैरामेलो को स्थानीय नस्ल घोषित कर दिया, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया है। कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गुरुवार को ये वीडियो जारी किया। वीडियो में एक ड्रोन एयरपोर्ट की छत से टकराता दिखाई दे रहा है। टक्कर होते ही ड्रोन के टुकड़े बिखर जाते हैं और आसपास नुकसान होता है। अब रुक कर लेते हैं भारत से जुड़ी खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 2 सीटों के लिए राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और उद्योगपति रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया। गुजरात की 4 सीटों पर राजूभाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मानसिंह परमार और जितेंद्र मेघजीभाई कंजारिया को उम्मीदवार बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश से ताई तागक और मणिपुर से ए शारदा देवी को टिकट मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कम शैक्षणिक योग्यता के लिए आरक्षित नौकरी के लिए अपनी शिक्षा छुपाना पद के असली हकदार से रोजगार छीनना है, इसलिए उच्च योग्यता छिपाकर ली गई नौकरी कानूनन अमान्य होगी। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कोर्ट ने सिंडिकेट बैंक के अटेंडेंट की नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री छुपाने वाले एक व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की तरफ से 3 प्रवक्ता पहली बार अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच आए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया और कहा इसके लिए वे सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने लिखा, भारत के विकास की चर्चा महानगरों, उद्योगों, तकनीक और आधुनिक संरचना के संदर्भ में की जाती है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और तीव्र आर्थिक गतिविधियां प्रगति का प्रतीक मानी जाती हैं, किंतु इस विकास यात्रा के बीच महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या हम अनजाने में गांवों की मूल आत्मा को खोते जा रहे हैं? क्या विकास का अर्थ ये होना चाहिए कि गांव धीरे धीरे शहर का रूप ले ले? और अब खबर बॉलीवुड से। फिल्म प्रोड्यूसर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष रहे पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे। उन्होंने बुधवार देर रात 3 बजे आखिरी सांस ली। पहलाज निहलानी का अंतिम संस्कार सांताक्रूज शमशान में आज 3 बजे किया गया। और दूसरी खबर जुड़ी हुई है फिल्म डॉन 3 के विवाद से। रणवीर सिंह के समर्थन में दिए गए कंगना रनौत के बयान पर अशोक पंडित की रिएक्शन आई है। उन्होंने कहा कि कंगना बकवास करती हैं, इसलिए मैंने उन्हें बैन किया था। मीडिया से बातचीत में पंडित ने कहा, इंडस्ट्री के बहुत से लोग हमें गालियां देने लगे हैं। कल कंगना ने भी कुछ कहा। लोग पूरे मामले को समझे बिना ही कमेंट कर रहे हैं। कंगना ने यह भी कहा कि मुझे इंडस्ट्री ने बैन कर दिया है। मैंने कहा, तुम बेकार की बातें करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें बैन किया। ये बयान है अशोक पंडित का। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, आपका स्वागत है मस्ती की रेलगाड़ी पर। कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
0: गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे राफी जी। और बहुत सारे लोग जो आपके सेमिनार्स में जाते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, बड़े हैप्पी होकर आते हैं और बड़े अच्छे उनके बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं विन लाइफ टाइम के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग करी हुई है और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ट्रेडिंग करने से, तो मैं चाहूंगी कि आज हम उन लोगों को बताएं कि क्या गलती करी, क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी नहीं साबित हुई और डेफिनेटली उन्होंने विन लाइफ टाइम का रुख नहीं किया है अभी। तो मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या गलती हम कर देते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में।
1: प्राइमरली दो मेन चीजें हमने देखी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं किसी और तरफ से जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। एक तो होता है कि सीख उनसे रहे होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते
0: जी।
1: तो हमारे एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा जान, के आपको कुछ आधा पता होता है आधा नहीं पता। आपको ट्रेडिंग में किसी ने डाल दिया, आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और आपका नुकसान हो गया। नंबर टू, आपने ट्रेडिंग अकेले की, किसी सुपरविजन के बैठ के नहीं की। हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो ऑफिसेज हैं, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। आज भी सुबह 9:35 पे सेशन शुरू हुआ और 9:45 पे हमारे सीईओ ने कहा कि आप लोग सारे घर जा सकते हैं और टारगेट पूरा हो गया है।
0: अच्छा।
1: तो हम लोग इसलिए एक बकायदा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग सिखाएंगे। बकायदा क्लासेस होती हैं, बकायदा सॉफ्टवेयर है, तो इट्स नॉट ए वन मैन शो। तो ये दो गलतियां मोस्टली करते हैं कि सुने सुनाए किसी ने कहा ट्रेडिंग में पैसे डाल दें, ऐसे नहीं होता। नंबर टू, ट्रेडिंग में हम लोग कहते हैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करते।
0: वाह, क्या बात है। तो अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, और देयर आर सम कंपनीज हु आर हेल्पिंग अस ग्रो आवर बिजनेस एट विन लाइफ।
1: एब्सोल्युटली, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हाफ अ मिलियन डॉलर नॉर्मली अवेलेबल पड़ा होता है। वो कोई रिस्क नहीं है, सारे का सिर्फ उनको ट्रेडर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो, तो वो सारे का सारा रिस्क वो लेंगे और आप रिवॉर्ड आपको देंगे।
0: दैट्स अमेजिंग। तो राफी जी, जो आपका सेमिनार हो रहा है बिल्कुल फ्री सेमिनार दिस सैटरडे, उस हवाले से बताए हमारे लिसनर्स को कौन कौन इसमें आ सकता है और अभी कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे लिसनर्स के लिए।
1: लेकिन लास्ट टाइम सेमिनार किया था दूसरी लोकेशन में, तो हमने कहा था अपने पिकनिक चेयर्स रखें साथ गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उस वक्त भी। तो सेम हो जाता है, ओवरफ्लो ओवर क्राउड हो जाता है, लेकिन हम हर सैटरडे को सेमिनार करते हैं, तो कोई भी आ सकता है किसी भी बैकग्राउंड से। यू आर नेवर टू यंग टू स्टार्ट, नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट। कभी भी आए, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी हर हफ्ते सेमिनार के साथ मिलती रहेगी।
0: वंडरफुल। तो दोस्तों, 10 नंबर के फासले पर है ये अपॉर्चुनिटी। 905-206-1008, that's 905-206-1008, winlifetime.com, right away call करें और सैटरडे के सेमिनार के लिए अपनी सीट बुक करें। थैंक यू राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
1: Thank you. Take care.
0: Jee.
2: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.

0: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: दोस्तों 905-206-1008 ये नंबर है विन लाइफ टाइम का, और ये नंबर सही मायने में आपकी जिंदगी बदल सकता है. कैसे जाने के लिए यहां से एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड

0: drive with Sean Express. Masti ki rail gari. Apne business ko dijiye express speed. For advertising, call 416-569-7812. 416-569-7812.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
4: भाई चार लोकेशन तो देण सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
5: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
6: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
5: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810 10 मिड्डा फर्नीचर।
7: वेल दोस्तों, मिड्डा फर्नीचर गैलरी यानी जब भी वीकेंड आता है तो हम सेट करते हैं मिड्डा फर्नीचर गैलरी की। तो अब तो भाई बड़ी खुशी की बात है कि 5 लोकेशन खुल चुकी हैं, 5वीं लोकेशन खुल चुकी है और पवन जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पवन जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो 5वीं लोकेशन की। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लोकेशन इन लंदन। तो इस लोकेशन को सेलिब्रेट करते हैं और पूछते हैं आपसे कि इस वीकेंड के कौन से स्पेशल ऑफर हैं।
8: थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा सारी बहन भाइयों का, सारी कम्युनिटी का, कि हमें ग्रैंड ओपनिंग पे बहुत सारे मैसेजेस आए, ईमेल्स आई, आपका आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, साथ मिला, वैल्यूएबल बिजनेस दिया, तो उसके लिए कोटि कोटि नमन है। और ये सब संभव हुआ आप सब बहन भाइयों के प्यार से। तो ये ग्रैंड ओपनिंग की जो धमाका सेल है, तो हमने पूरा जून का महीना, तो आई थिंक जब इधर स्टॉक क्योंकि कुछ लिमिटेड आइटम्स हैं आपको जारी रहेंगी, क्योंकि जो हमारा फ्लायर है इधर लंदन में वो मतलब दो पिछले वीक गया, इस वीक गया, अगले वीक गया, तो आई थिंक मिड ऑफ जून अगले वीक तक जारी रखेंगे। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि आप ले लास्ट में आए, पहले आए पहले पाए वाला कुछ एक डील है। हमारा फ्लायर लगा हुआ है वेबसाइट के ऊपर और मैं ही बोल रहा हूँ रेडियो के ऊपर, क्योंकि मैं वो हम वो नहीं बोल सकते कि जी आज जो पुरानी लिक्विडेशन सेल हमने लगा दी है, 10 मिलियन की इन्वेंट्री क्लियर करनी है और 10 मिलियन वाला 8000 वाला सोफा 200 का है। ये विश्वास, मतलब मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, लेकिन हमें भी रोज ही मतलब वो शोर सुनने को मिल रहा है, टिकटॉक पे भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। लेकिन जब अब बहन भाइयों को नहीं बताया जा सकता कि अगर आप मेरी बहन के नाते कस्टमर के नाते तो कुछ भी बोल सकते हैं
7: जी।
8: तो मिड्डा फर्नीचर जाना जाता है अच्छे फर्नीचर के लिए, अगर आप अपने घर को अच्छे फर्नीचर से सजाना चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि आप हमें अजमाएं पहले, मॉडल टू मॉडल कंपेयर करें कि जो चीज से मैं भी बोल रहा हूं, कि मैं आपको मॉडल नंबर भी बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 243 का जो मॉडल नंबर है हमने 599 का लगाया हुआ, आप बिल्कुल कंपेयर करें। हो सकता है कोई भाई आपको 579 में दे रहा हो, लेकिन हम 599 के साथ 100-150 का गिफ्ट भी आपको दे रहे हैं। तो आपको कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है, और हमें हमें आपका प्यार और ताकतवर मिलता है जब आप कंपेयर आपके टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो जो आपको अच्छा फर्नीचर, वो चाहूंगा कि आपके घर में पाए बंद फर्नीचर, आई नो इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो है, मतलब बहुत सारी चीजें वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं, तो अगर मतलब हम अगर 1800 वाला नहीं ले सकते और चाहे 500 वाला भी लेना, लेकिन हमें टेम्परेरी थोड़ा ही लेना है। कई बार हम कह लेते हैं कि कोई नहीं हमें टेम्परेरी चाहिए, लेकिन सोफे का क्या टेम्परेरी, सोफा तो आप 2-4 साल तो हंडाओगे ना उससे, कम से कम मिनिमम मतलब आपने। तो हम आपको जो कैनेडियन मेड सोफा देंगे, बेडरूम से हमारे पास बेडरूम सेट 799 का सेट भी है, बेड, ड्रेसर, मिरर, नाइट टेबल, और 7999 का भी है। तो मैं चाहूंगा कि भगवान से अरदास भी करूंगा कि आपको बहुत सारी बचत हो, बहुत सारी आपकी इनकम आए, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप अपने घर का अच्छा फर्नीचर ले जाएं। हम जाने जाते हैं मॉडल टू मॉडल कंपेयर में, चाहे इटालियन फर्नीचर है, कैनेडियन मेड है, जेन्युइन लेदर है। आज हमने सारे लोकेशनों पे एक सोफा ऐड करा है जो बड़े घरों के लिए 108 इंच का सोफा बनाया हमने। 12 इंच की तो कुशन डाला है उसके ऊपर, जो आपका फैमिली या लिविंग रूम वाव कर उठेगा। इसका मतलब वो बहन भाई भी नाराज ना हो, अगर इनका किसी का छोटा घर है वो कस्टमाइजेशन है कि अगर वो 80 इंच बनाना है तो भी बना देंगे, 68 बनाना है तो भी बना देंगे, और 118-20 बनाना है वो भी बना देंगे। तो वी नोन फॉर दैट। तो हमने जो मैट्रेस की, जैसे आपको कहा नेक्स्टर मैट्रेस है, 365 डे की स्लीप गारंटी है, पैनल वाले आजकल बेड जिसमें लाइट में हेडबोर्ड और हाइड्रोलिक स्टोरेज हमारे पास बहुत आए हुए हैं। एक बेड हमने हाइड्रोलिक स्टोरेज 999 बजार में बहुत है, हमारे पास भी 1199 के, लेकिन 1200 के पीछे $200 बचत ये मिड्डा फर्नीचर करके दिखाता है। इसके अलावा आप जो ढूंढ रहे हैं उसकी हमारे से प्राइस पूछें, किसी भी एडवर्टीज को मैं माफी मांगते हुए आज ऑलवेज कहता हूँ, क्योंकि जो और बहन भाई हैं वो भी मेरे बहन भाई हैं जिनका और का बिजनेस है, जिनका फ्लायर की प्राइस मैं किसी के पर्टिकुलर की नहीं कह रहा, लेकिन एडवर्टीज प्राइस को मैच नहीं बीट करते हैं। और जो रही गिफ्ट की बात, गिफ्ट कई बार आपको कहते हैं ना, अभी वो बच्चे को वो एक वो पकड़ा लो ना चॉकलेट छोटी सी डॉलर स्टोर वाली, उससे भी बच्चा खुश हो जाता है। तो मैं बच्चा खुश नहीं कर रहा, मैं बहन भाइयों को गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। गिफ्ट भी हमारे फ्लायर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एशले की जो वॉल आर्ट है वो पिक्चर 249 रिटेल वैल्यू है। मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा है। हमने मॉडल नंबर भी आपको दिए हुए हैं, एशले की जो एरिया रग कारपेट होता है उसके भी 3 चॉइसेस और मॉडल नंबर आपको दिए हुए हैं। एशले के टेबल लैंप के भी आपको दिए हुए हैं। मेमोरी फोम का पिल्लो तो अमेजोन पे मिल रहा है 149 का, तो हम आपको परचेज के साथ फ्री दे रहे हैं। और मैं ये जो बोल रहा हूँ वो आप तब विश्वास करें जब आपके टेस्ट में पास हो जाए। एक बार आए तो सही, अजमाएं तो सही, अपना बनाएं तो सही, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी।
7: थैंक यू सो मच पवन जी हमसे जुड़ने के लिए, और आपका नंबर फिर से बता दें, 416-901-2810, दैट्स 416-901-2810। आपसे ये कुछ देर में फिर बातचीत होगी पवन जी, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
8: थैंक यू जी।
7: जी दोस्तों, आपका फिर से शालिनी वेलकम करती है सीएमआर एफएम 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। इट्स 3:23 राइट नाउ। बहुत जल्दी बॉलीवुड का पन्ना खोलते हैं और आपको बताते हैं कि आज का बर्थडे कौन सी सेलिब्रिटी मना रही है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू नाउ कि कौन सी सेलिब्रिटी आज का बर्थडे मना रही है। उनके जो गाने हैं वो भी बहुत ही गजब के हैं और इनका जो स्टाइल है, इनका जो डांस है वो भी बहुत अमेजिंग है। और इस हवाले से एक बहुत ही अच्छा जो है आप तक पहुंचाएंगे गाना बहुत जल्दी हम। और आपको बता दें कि बर्थडे किस सेलिब्रिटी का है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी है और इन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस में एक जो गाना था वो आपकी नज़र करेंगे। प्रिया मणि ये बना रही हैं आज अपना बर्थडे, और इनका जो करियर रहा है बहुत ही वर्सेटाइल रहा है। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी हर इंडस्ट्री में काम किया है। उनकी एक्टिंग बड़ी नेचुरल है और हर एक एक्सप्रेशन एकदम पावरफुल है। और इनकी एक्टिंग को सबसे पहले सबसे बड़ी पहचान मिली एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस से जो उन्होंने किया एक तमिल फिल्म में, और इस फिल्म का नाम था परु थिविरन, और इसमें प्रिया मणि को नेशनल अवार्ड मिला है। एक ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट है उनके लिए। और चेन्नई एक्सप्रेस में लाइक आई सेड उनका एक बड़ा स्पेशल अपीयरेंस था, शॉर्ट था लेकिन इम्पैक्ट वाज फुल ऑन। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ये जो गाना है चेन्नई एक्सप्रेस का इन्हीं पर पिक्चराइज था, और इनका जो डांस था दैट वाज एकदम इलेक्ट्रीफाइंग। तो इनको डेडिकेट करते हैं आज का अगला गाना बहुत जल्दी। और अब बता देते हैं कि आज के दिन में क्या क्या खास हो रहा है, और ये जो बात है आज के दिन की स्पेशल बात आप तक पहुंचा रहे हैं कुछ हमारे स्पॉन्सर्स। सबसे पहले आपको बता दें यश विंडोज़ एंड डोर्स के बारे में, बहुत ही अच्छी सर्विसेज देते हैं। विंडोज़ एंड डोर्स में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी आपको मिलती है रीजनेबल प्राइस में, और यश विंडोज़ एंड डोर्स ऑल ओवर ऑन्टारियो सर्विसेज देते हैं। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, खुद ही इनकी परफेक्ट और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन होती है. नो मिडल मैन, नो कॉम्प्रोमाइज. लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग कम्स टुगेदर. और अब इनकी फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यश विंडोज एंड डोर्स में ज़रूर जाएं. और इतनी सारी चीज़ें एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिलती हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक ग्रोइंग टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं. नंबर 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600. और टुडेज डे इज को स्पॉन्सर्ड बाय देओल ट्रैवल. आज की लेटेस्ट डील्स आप नोट कर लें देओल ट्रैवल की तरफ से जो आ रही हैं. अगर आप जाना चाहते हैं टोरंटो से दिल्ली तो नोट कीजिए आज के स्पेशल फेयर्स. बिफोर मिड जून जा सकते हैं 849 में वन वे दो लगेज के साथ. आफ्टर मिड जून 999 में टोरंटो से दिल्ली वन वे दो लगेज के साथ. अब जुलाई में जा सकते हैं टोरंटो से दिल्ली 1049 में वन वे दो लगेज के साथ. दो लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन. देओल ट्रैवल का नंबर 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. और आज के दिन में बता दें क्या कुछ खास होने जा रहा है. पहले तो आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, बिकॉज टुडे इज़ नेशनल चीज़ डे. अगर आप चीज़ लवर्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या पास्ता, तो गिल्ट फ्री होकर आप इंजॉय कीजिए. हग योर कैट डे भी है. आपके पास प्यारी सी किटन है, उसको हग कर लीजिए. ओडेसिटी टू होप डे है आज. थोड़ा इंस्पिरेशन यानी ओडेसिटी टू होप. आज का दिन हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जो उम्मीद है, जो होप है, हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है. इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, उन बच्चों को डेडिकेटेड है आज का दिन जो अग्रेशन का शिकार हुए हैं. नेशनल जो है आज डे है कोनियाक डे. अगर आप कोनियाक पीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आज पी लीजिए. शॉपिंग कार्ड डे है. शॉपिंग करना पसंद है, डेफिनेटली गो एंड ग्रैब योर शॉपिंग कार्ड. परफेक्ट चीज़ें शॉप अराउंड कीजिए. नेशनल सेफ्टी भी है आज. आज का दिन याद दिलाता है कि सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में. ये तो रहे आज के दिन. और एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं और अब चलेंगे आज की ताज़ा खबरों की तरफ. उसके बाद 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर शॉन एक्सप्रेस पर.
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
9: Another Don Clean with the Don Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
12: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन्स और ग्रेट प्राइसिंग. चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
12: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर. ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर. वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
13: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first-time homebuyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
14: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
15: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। रुख करते हैं अब इम्पोर्टेंट लोकल खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड यानी TDSB आने वाले स्कूल ईयर में करीबन 800 नौकरियां खत्म कर सकता है। इस फैसले का असर एजुकेशन सिस्टम और स्टाफ दोनों पर पड़ सकता है। अब बात ओंटारियो सरकार से जुड़ी। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि गार्डनर एक्सप्रेसवे और डॉन वैली पार्कवे का कंट्रोल प्रोविंस के पास जाएगा और ये प्रोसेस फॉल 2027 तक पूरा होगा। तब तक ओंटारियो सरकार सिटी ऑफ टोरंटो को $350 मिलियन देगी ताकि हाईवेज की मेंटेनेंस और ऑपरेशन जारी रह सके। प्रीमियर डग फोर्ड ने एक बार फिर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 51st स्टेट के बयान पर तीखा जवाब दिया है। कहा कि कनाडा कभी भी 51st स्टेट नहीं बनेगा, कनाडा इज नॉट फॉर सेल। उधर मेयर ओलिविया चाओ ने फीफा के रीयूजेबल वाटर बॉटल बैन को प्योर मनी ग्रैब बता दिया है, यानी फैन से एक्स्ट्रा पैसा लेने की कोशिश। दूसरी तरफ CAA की वर्स्ट रोड्स की लिस्ट में हैमिल्टन की बार्टन स्ट्रीट ईस्ट सबसे खराब सड़क बनी है। मिसिसागा की हरिंटारियो स्ट्रीट दूसरे नंबर पर और टोरंटो की स्ट्रील्स एवेन्यू ईस्ट एंड शेपर्ड एवेन्यू वेस्ट भी लिस्ट में शामिल है। हॉल्टन पुलिस ने ऑटो थेफ्ट के दो बड़े नेटवर्क्स को तोड़ते हुए चार लोगों को अरेस्ट कर लिया है। प्रोजेक्ट जोकर इन्वेस्टिगेशन में ऑर्गेनाइज क्राइम लिंक्स सामने आए हैं। उधर ओंटारियो सरकार ने टिकट रीसेल पर फाइन बढ़ाकर 225,000 कर दिया है। हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप टिकट्स के बारे में, ताकि इलीगल रीसेल को रोका जा सके। उधर ग्रोसरी प्राइसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। अप्रैल में 3.5% की बढ़ोतरी सामने आई है, लेकिन राहत के तौर पर नया कनाडा ग्रोसरीज एंड एसेंशियल बेनिफिट आ रहा है, जिसमें पेमेंट्स 25% तक मिल सकेंगी। दूसरी तरफ आज का वेदर जो है सुपर हॉट है। हाई ऑफ 29 डिग्रीज, ह्यूमिडेक्स के साथ 31 डिग्री है, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड्स और आज का लो रहेगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी 4 बजे तक CMRFM 101.3 पर।

0: 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. और अब जो है dance floor के साथ साथ आपको gifts भी मिलेंगे और आप जाएंगे Specs Express की तरफ जहाँ पर summer को celebrate किया जा रहा है. Joining us now is Rajan ji with the latest deals. Rajan ji, very warm welcome.
1: थैंक यू सो मच शालिनी जी और सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून.
0: गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे.
1: जी शालिनी जी, सो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा जी, अब जैसे समर आ चुकी है, बहुत सारे हमारे भाई बहन है वो घूमने भी निकलते हैं बाहर जी, तो दोस्तों अगर आप बाहर घूमने निकलते हैं तो सनग्लासेस जरूर पहने और मेक श्योर कि आपके पास जो सनग्लासेस हों यूवी प्रोटेक्टेड हों और कोशिश करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पोलराइज्ड सनग्लासेस लें. तो हमारे पास सभी ही बढ़िया सनग्लासेस के ऊपर डील्स चल रही हैं. अगर आपको गुच्ची के सनग्लासेस चाहिए या फिर पराडा के या फिर डॉल्ची कबाना के, वर्साची के, बर्बरी के, टॉम फोर्ड के, ये सभी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस के ऊपर दोस्तों आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है जी.
0: ओह वाओ,
1: यस. और शालिनी जी, ऐसे ही जिनको अरमानी के सनग्लासेस चाहिए, पोलो के, माइकल कोर्स के, रॉल्स लॉरेन के, कोच के या फिर मार्क जेकब के, केट स्पेड के, ये सभी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस दोस्तों आपको आज फ्लैट 50% ऑफ दिए जा रहे हैं जी.
0: ओह नाइस.
1: उससे भी बढ़िया डील, आपको टॉमी हिलफिगर के फ्रेम्स ले लें या सनग्लासेस, जैसे कैल्विन क्लाइन के चाहे आप फ्रेम्स ले लें या सनग्लासेस, आपको आज फ्लैट 75% ऑफ दिए जा रहे हैं. सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज सेल क्योंकि समर आ चुकी है. सभी भाई बहनों को होता है कि बाहर जाएं तो थोड़ा सा स्टाइलिश लगे, थोड़ा अच्छा जो लेटेस्ट ट्रेंड हो उस ट्रेंड के हमने ब्रांडेड सनग्लासेस पहने हो, तो ये सभी डील्स का आप फायदा उठा सकते हैं. कॉल करने के लिए एक ही नंबर है जी, 905-460-8888. अब बात करेंगे जी आई एग्जाम की, तो आई एग्जाम में दोनों लोकेशन के ऊपर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होते हैं जी. आज थर्सडे को हमारी क्रेडिट व्यू एंड सैंडलवुड वाली लोकेशन, यहाँ पर डॉक्टर हमारे पास तकरीबन शाम के 6 बजे तक अवेलेबल हैं. अब अपना कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जाम करा सकते हैं. और शालिनी जी, जब हमारे पास कस्टमर आते हैं आई एग्जाम कराने के लिए, उनकी विजन तो चेक होती होती है, साथ में उनकी आंखों की हेल्थ जो कि बहुत जरूरी है उसका भी पूरा चेकअप होता है. और हमारे पास लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट है. सो इसमें ओसीडी है. आमतौर पर क्या होता है शालिनी जी, जब हम आई एग्जाम कराते हैं तो डॉक्टर ड्रॉप डालते हैं और डायलेट करके आपकी आंखें बैक ऑफ द आई देखते हैं, जिससे बाद में आप या तो ऑफ लेना पड़ता है आपको काम से, या आपको ड्राइविंग नहीं कर सकते, आपको किसी को चाहिए साथ हो जिसके साथ आप ड्राइव करके घर आ सके. लेकिन जो हमारे पास ओसीटी मशीन है जी, इसमें हम विदाउट ड्रॉप्स वाले, विदाउट डायलेट किए, हमारी जो ये मशीन है ये बैक ऑफ द आई रेटिना को स्कैन कर लेती है और जो भी रिजल्ट्स आते हैं ना एक बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते हैं. ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ने छोटे से लेंस के अंदर देख लिया और बता दिया कि जी सारा कुछ ठीक है, नहीं. जो ओसीटी के रिजल्ट हैं वो एक बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपकी आंख का पूरी पिक्चर आती है और फिर आपको डॉक्टर समझाते हैं कि बैक ऑफ द आई रेटिना में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कहां पर चल रही है और उसका क्या ट्रीटमेंट है. सो ऐसा डिटेल्ड एग्जाम दोस्तों अगर आप अपना या अपनी फैमिली का करवाना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें. डॉक्टर हमारे पास आज थर्सडे, कल फ्राइडे और परसों सैटरडे भी हैं और इवन कई लोग जिनको वीकेंड के ऊपर काम होता है और वीकडेज में बिजी होते हैं उनके लिए अब हमने स्पेशली ट्यूसडे को भी आफ्टरनून में, सॉरी ट्यूसडे को इवनिंग में डॉक्टर रेंज रखा जी. सो आप अपने अकॉर्डिंगली की कोई भी डे और टाइम आपको सूट करता है आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं. 905-460-8888, 905-460-8888. और सबसे बढ़िया डील हमारा वैल्यू पैकेज, क्योंकि जब आप आई एग्जाम करवा लेते हैं तो जरूरत पड़ती है जी ग्लासेस की, तो ग्लासेस आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज मिल रही हैं. आपका आई एग्जाम भी यहाँ पर हो रहा है, ग्लासेस भी हम बनाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई भी कंसर्न हो तो हम यहीं पे रिजॉल्व कर देंगे. और शालिनी जी, ग्लासेस में इतनी ज्यादा सेविंग होती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे. जो हमारा वैल्यू पैकेज है लोग सब आ रहे हैं जी इसको लेने के लिए.
0: वेरी नाइस.
1: अलग का हम ब्रांडेड फ्रेम आपको दे रहे हैं जिस वैल्यू पैकेज में. इसमें लंदन फॉग के, लिवाइस के, रैंगलर के, वैन ह्यूसन के, एडी बाबर के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम शामिल हैं. साथ में $100 की कीमत के सिंगल विजन लेंसेज ये भी इंक्लूडेड हैं. सो कुल मिलाकर ये 400 का पैकेज है जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $129 में दे रहे हैं. सिर्फ $129.
0: यू बिलीव, अमेजिंग.
1: ऐसे ही जिनको प्रोग्रेसिव, जिनकी एज 40 से ऊपर होती है, उनको होता है कि प्रोग्रेसिव चाहिए और प्रोग्रेसिव ग्लासेस बहुत महंगे होते हैं, उनके लिए बढ़िया कंपनी दुनिया के सबसे एसएलआर के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस हम आपको दे रहे हैं। $300 की कीमत के ये लेंसेज हैं और $300 की कीमत का फ्रेम, $600 का पैकेज सिर्फ $258 में, सिर्फ $258 में। एंड नाउ ऑन टॉप ऑफ इट, जब आप ग्लासेस बनाते हैं तो आपको कोटिंग की भी जरूरत पड़ती है, आप जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं अपने ग्लासेस के ऊपर, सभी के सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ।
0: ब्यूटीफुल, अमेजिंग।
1: अगर कोई भी चाहता है कि हाँ मेरे पास दो पेयर हो, एक मैं घर पे रखूं एक ऑफिस पे, तो दोस्तों पहले के ऊपर कोटिंग 50% ऑफ है और दूसरे पेयर के ऊपर आपको कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी।
0: आउटस्टैंडिंग।
1: यस, ये अमेजिंग अमेजिंग डील्स लेनी है दोस्तों तो आप पहुंच जाए स्पेक्स एक्सप्रेस की किसी भी लोकेशन के ऊपर। हमारा एड्रेस है जी 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, ये फोर्टन एंड स्टील्स कह लें या कैनेडियन स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा, और नंबर है 9054608888। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स है बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। सो एक ही नंबर दोस्तों 9054608888, 9054608888। और जाते जाते शालिनी जी, मस्ती की रेलगाड़ी के लिसनर्स के लिए एक स्पेशल डील, क्योंकि यह अपने रखी होती है। बिल्कुल, बहुत सारे हमारे लिसनर्स होते हैं कि बहुत बढ़िया ब्रांडेड सनग्लासेस हों और बहुत मिले, तो पहले 5 कॉलर्स जो हमें अभी कॉल करेंगे उनको हम टिफनी के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ देंगे। सो पहले 5 कॉलर्स अभी कॉल कर लें, टिफनी के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 50% लेने हैं तो अभी कॉल कर लें 9054608888, 9054608888।
0: क्या बात है, टिफनी के सनग्लासेस 50% ऑफ पर हैं, पहले 5 कॉलर्स के लिए कॉल कीजिए 9054608888, 9054608888। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राजन जी, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: यू मोस्ट वेलकम। दोस्तों बहुत प्यारा सा गाना आप तक का, पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी, अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंगशुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
8: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
9: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
10: लेक डेदा प्लान सी, पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सकून नहीं, शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ, ता इस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेडटेक डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफरोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल।
11: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekin. I have first-time home buyers clearly an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
12: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
13: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
14: Jab

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस। हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी आप तक एक ऐसा गाना पहुंचाएंगे जो आप तक पहुंचाया जा रहा है मेडा फर्नीचर के सौजन्य से। और ये गाना ऐसा है जिसमें प्यार भी है, शरारत भी है, थोड़ा सा छेड़ने वाला अंदाज भी है। और 60 के दशक का ये सुपर चार्मिंग जो गाना है मोहम्मद रफ़ी की जादुई आवाज़ में है। कहते हैं अकेले अकेले यूँ कहीं निकल ना जाना, अकेले अकेले यूँ कहीं निकल ना जाना, दिल को यूँ तड़पा कर हमें भूल ना जाना। हम तो खड़े हैं तेरी राहों में मुस्कुराकर, बस एक बार मुड़कर हमें देख तो जाना। और ये गाना बहुत जल्दी आपकी नज़र करेंगे। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। रफ़ी साहब की आवाज़ है और एन इवनिंग इन पेरिस का ये गाना आप तक पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ मिडा फर्नीचर गैलरी से जुड़ेंगे पवन मिडा जी, और एक बार वंस मोर सुपर डुपर हिट डील्स के साथ। पवन जी, वेलकम बैक।
3: थैंक यू जी, और सुनने वाले सभी बहन भाइयों को वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिडा फर्नीचर हाजिर है आपकी सेवा में, और 5 लोकेशन से आपकी सेवा करते हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज से। और हम जो लंदन में हमारी जो नई ग्रैंड ओपनिंग हुई है, तो उसके भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया हमें। हम चाहते हैं कि ये प्यार का रिश्ता बना रहे, ये रिश्तों की डोर लंबी हो और अपने ये जो हमारा रिश्ता स्ट्रांग भी हो। तो मिडा फर्नीचर, मैंने पिछले लिंक में कहा था, जाना जाता है मिड टू हाई एंड फर्नीचर के लिए, और जो क्वालिटी बेचते हैं, अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, और प्राइस जो है ना केवल दावा करते हैं लेकिन प्रूफ भी करवाते हैं आपको। आपको कहते हैं आप मॉडल टू मॉडल जब कंपेयर करेंगे तो हमारी प्राइस 10-30% सस्ती है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई हमने 10 मिलियन की इन्वेंट्री नहीं लेके निकाल रहे। मतलब जैसे वो मैंने पिछले लिंक में कहा था कि बहुत सारी गिमिक्स हो रही हैं, और लेकिन हम जो है कंटेनर बाइंग करते हैं। ऑफ कोर्स 5 स्टोर है, आप प्यार देते हैं तभी पकड़ पाते हैं, अकेला लेके घर भी कहाँ रख लेंगे। मतलब अपने ओंटेरियो के सबसे बड़े डीलर हैं, जो जैसे एशले के आइटम हम कंटेनर में लाते हैं वो बाजार से हमारी 10-30% सस्ती होती है। और कोई भी आइटम लोकल सप्लायर है, अगर किसी और बहन भाई के जैसे अगर हमारे 5-6 स्टोर होंगे उन्हें भी वॉल्यूम डिस्काउंट मिल रहा होगा, लेकिन आपकी आशीर्वाद से हमारे 5 स्टोर एक ही नाम से, एक ही लोकेशन, प्रोफेशनल 5 स्टोर है और वॉल्यूम डिस्काउंट हमें मिलता है, चाहे वो ब्रांड नेम फर्नीचर हो या कैनेडियन मेड, कस्टम मेड, जो आप लेना चाहते हैं। तो हम बार बार कहते हैं ना, भी एक बार आए, हमें अपना बनाए, आजमाएं। जब आप टेस्ट लेंगे, आप बिल्कुल आपका हक बनता है बीइंग ए कस्टमर, आप शॉप राउंड भी करें, टेस्ट भी हमारा लें, तो आपको हम निराश जाने नहीं देते। और जो ग्रैंड ओपनिंग के धमाल अभी जारी रहेगी, और हर परचेज के साथ आपको गिफ्ट ऑन जो ऑफर दे रहे हैं, दिल से लव है आपके लिए ग्रैंड ओपनिंग की खुशी में। और गिफ्ट भी ऐसा मिलता नहीं, एशले के हमें 3-4 आइटमें हैं, जैसे कोई टेबल लैंप्स हैं, मेमोरी फोम के पिल्लोज हैं, एशले की आर्ट बड़ी पिक्चर जो आपके लिविंग रूम, फैमिली रूम को सजा देगी, और 5x8 वो भी एशले की, वो भी च्वाइस दे रहे हैं आपको, 3 मॉडल की च्वाइस देंगे ताकि आप अपने घर के कलर के हिसाब से पिक्चरों में भी, मेमोरी फोम पिल्लो में तो क्या च्वाइस दे सकते हैं, लेकिन लैंप में भी च्वाइस दे सकते हैं। तो कहते हैं अगर आप लेंगे तो उसका कैश बैक भी वापस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको रिश्ता मजबूत करना चाह रहे हैं, हमारा मोटिव वही। और आप बहन भाइयों ने हमें प्यार बहुत दिया है, और आशा रखते हैं ये प्यार की जो ये रिश्ता है हमें और स्ट्रांग होगा और बना रहेगा। तो फर्नीचर की कोई भी आपको नीड हो, आप एक बार हमारे स्टोर पे आए, अजमाएं और अपना बनाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। मिडा फर्नीचर, मिडा फर्नीचर, मिडा फर्नीचर, 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी।
2: 416-901-2810, that's 416-901-2810. Thank you so much, Pavan ji. फिर आपसे जुड़ेंगे कल. All the best. Take care. जी। और दोस्तों ये जो गाना है ये आप तक को स्पॉन्सर किया जा रहा है यश विंडोज एंड डोर्स के सौजन्य से। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स अगर आप ढूंढ रहे हैं रीजनेबल प्राइस में तो यश विंडोज एंड डोर्स में जरूर जाएं आप। और खुद ही इनकी टीम मैन्युफैक्चर करती है और खुद ही एक्सपर्ट इंस्टॉलर्स इंस्टॉल करते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर जाकर। सुपीरियर स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग कम्स टुगेदर। और फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आप बिजनेस ओनर हैं, ग्रोइंग टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यश विंडोज एंड डोर्स में जरूर बात कर सकते हैं। और नंबर नोट करें 416-732-3600 और चलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से नगमे की तरफ। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

0: भाई अकेले अकेले तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार और आपके साथ हैं वो इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब है। और भाई वो दोस्त भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके आप बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो भाई जो अच्छे रिश्ते होते हैं उनको अपने दिल के पास ही रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और अपने लोगों के साथ इंजॉय करना चाहते हैं नाइस एंड ब्यूटिफुल वेदर, तो आउटडोर्स अपने को और ब्यूटिफाई कर सकते हैं जगहों पर, जैसे कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी का साथ लीजिए, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर है कनाडा वाइड। आपके घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग आप इंस्टॉल करा सकते हैं। फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल। टॉप क्वालिटी मटेरियल, डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग, सब कुछ वहां पर मिलती है। सनरूम एंड कस्टम कैनोपी आप बनवा सकते हैं। आउटडोर स्पेस को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन पे जाएं। कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, स्टाइल एंड प्रोटेक्शन एक साथ साथ। 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790। और साथ ही दोस्तों, अगर आप घर में किसी भी तरह की रिपेयर कराना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं, एक्सटीरियर या इंटीरियर, किचन में कोई काम कराना है, वॉशरूम्स को रीमॉडल कराना है, बेसमेंट में कोई काम कराना चाहते हैं, रूफ आपकी ख़राब हो गई है, साइडिंग्स, डेक्स, अप्लाइंसेस, ड्राईवॉल, फ्लोर वर्क, पेंटिंग, फिनिशिंग, एनीथिंग यू नेम इट, एंड यू गेट परफेक्ट सर्विसेज फ्रॉम अजीम। आप इनका नंबर लिख लें, योर होम इज़ इन गुड हैंड्स, गारंटेड जो है क्वालिटी वर्क है, ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं। अजीम का नंबर फॉर ऑल दीज वर्क 6472808806, 6472808806। और साथ में फिर से याद दिला दूं आपको देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स के बारे में। टोरंटो से दिल्ली आप जा सकते हैं बिफोर मिड जून 849 में वन वे, टोरंटो से दिल्ली आफ्टर मिड जून 999 में दो लगेज के साथ वन वे, टोरंटो से दिल्ली इन द मंथ ऑफ जुलाई 1049 में वन वे विद टू लगेज। नंबर्स नोट कर ले, 905-588-5100 एंड 905-588-4200, देओल ट्रैवल। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक विद द लास्ट सॉन्ग फॉर टुडे।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
3: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
2: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइन।
3: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232,
4: 8902-3232। आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812, और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com। Shawn Express, a Shawn Media presentation।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। बंदर भाइयों, हवाओं में आज फिर एक भीनी सी खुशबू छाई है। हवाओं में आज फिर एक भीनी सी खुशबू छाई है। लगता है किसी के दिल में किसी की याद मुस्कुराई है। धड़कनों को थामिए, अपनी मोहब्बत को महसूस कीजिए। धड़कनों को थामिए, अपनी मोहब्बत को महसूस कीजिए। कुछ बातें हम कहते हैं, कुछ बातें आप अपनी खामोशी से कीजिए। हाँ जी बिंदर भाइयों, थोड़ी सी बात हम करेंगे, थोड़ी सी बातें आप खुद से खामोशी से करते रहिएगा। ये द वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।
2: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African
3: Lion Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
5: वाह मॉम, डैड इज इन अ जॉली गुड मूड टुडे। व्हाट इज द रीजन?
6: दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फेमस मसाला चाय बाय नेविगेटर्स कैफे।
5: आई नो दिस प्लेस, देयर आल्सो फेमस फॉर डिलीशियस स्नैक्स लाइक आलू पेटीज, समोसा, वड़ा पाव, स्प्रिंग रोल्स, मैंगो लस्सी एंड माय फेवरेट समोसा चाट एंड भेल।
7: नेविगेटर्स कैफे लोकेटेड एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ क्वीन स्ट्रीट ईस्ट एंड एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। दे आर कन्वीनिएंटली ओपन 24/7।
8: हाँ जी मित्र भाइयों, आप जानते ही होंगे कि जून का महीना रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट के लिए एनिवर्सरी मंथ है, और इसी एनिवर्सरी मंथ पर बेहतरीन प्रमोशंस आपके लिए। रेडियो वॉइस भी होगा लाइव ऑन लोकेशन दिस फ्राइडे, जरूर पहुंचिएगा 5200 डिक्सी रोड इन मिसिसागा। वेबसाइट भी विजिट करें rijsfurnitureplanet.ca। रिट्ज फर्नीचर्स एनिवर्सरी मंथ, जरूर बेनिफिट लीजिएगा। ये रेडियो वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
9: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाए।

0: करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
1: हाँ जी मेरे भाइयों, रेडियो वॉइस और हम है आपके दोस्त जतीन। आइए नजर करते हैं अराउंड द कनाडा। कनाडा सरकार ने पेश की नई एआई रणनीति। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने टोरंटो में देश की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति की घोषणा कर दी है। इस प्लान के तहत बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बनाने और लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है ताकि देश में नौकरियां बढ़ सके। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इसमें सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर कड़े नियमों की कमी है। गार्डनर एक्सप्रेसवे और डीवीपी अब ओंटारियो सरकार के पास। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड और टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ ने बड़ा ऐलान किया है। टोरंटो के दो सबसे व्यस्त हाईवे गार्डनर एक्सप्रेसवे और डॉन वैली पार्कवे डीवीपी का मालिकाना हक फॉल 2027 तक पूरी तरह ओंटारियो सरकार के पास चला जाएगा। तब तक के लिए सरकार टोरंटो शहर को इसके रखरखाव के लिए $353 मिलियन देगी। अच्छी बात यह है कि इन पर कभी टोल टैक्स नहीं लगेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बयान पर डग फोर्ड का पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा से आने वाले सामानों पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी और कनाडा को 51st स्टेट जैसा बताने वाले बयानों पर ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है। फोर्ड ने कहा कि ट्रंप फिर से अपनी हाई हॉर्स पर सवार है और कनाडा अपने हितों की रक्षा किस तरह से करना वो अच्छी तरह से जानता है। हाँ जी मित्र भाइयों, फिर से एक बार डग फोर्ड ने 51st स्टेट की बात का धरे से इनकार कर दिया है और रहे रहे डोनाल्ड ट्रंप को फिर से 51st स्टेट याद आ गया है। और महंगाई की मार, ग्रोसरी आइटम्स की कीमतों में भारी उछाल। कनाडा के आर्थिक वॉचडॉग और नई रिपोर्ट्स के अनुसार देश का घाटा पिछले साल के मुकाबले लगभग दो गुना हो गया है। इसी बीच आम जनता के काम आने वाली रोजमर्रा की ग्रोसरी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल आया है और आगे चलते भी उछाल आने वाला है जिससे कनाडाई नागरिकों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। हाँ जी मित्र भाइयों, ये थी अराउंड द कनाडा की खबरें। कनाडा सरकार ने प्राइवेसी और महंगाई के बीच 1 मिलियन छात्रों को एआई सिखाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इंटेलिजेंस तो तब दिखेगी जब कोई ऐसा एआई टूल बनाए जो ग्रोसरी स्टोर के बिल को आधा कर सके। और रही बात गार्डनर एक्सप्रेस वे की, तो सरकार के हाथ में सौंपने की तो मालिकाना हक चाहे शहर का हो या प्रोविंस का, टोरंटो वालों को ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ही रेंगना है। अब रोते समय टैक्स पेयर को तसल्ली रहेगी कि उनका रोना टोल फ्री है। हाँ हाँ हाँ, ये रेडियो वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: हाँ जी मिंद्र भाइयों, रेड वॉइस और हम आपके दोस्त जतीन आप ही के लिए रेड वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट। मिंद्र भाइयों, देना होगा आपको जवाब। आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के। आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है, क्या एड्रेस जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com। आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस। उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। ये हिड वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
0: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
3: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
7: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
8: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232।
9: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
8: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
0: हाँ जी मिंद्र भाइयों, ये वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन। मिंद्र भाइयों, कर्जे से बाहर आना है और वो भी मुस्कुराहट के साथ, तो एक बार सिद्दीक साहब से बात और मुलाकात जरूर करें। डायल करें 416-671-0577, टोल फ्री नंबर 1855 671-0577। डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वेबसाइट विजिट करें aldersolutions.ca। बुक योर फ्री कंसल्टेशन 416-671-0577। सिद्दीक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। प्लीज आपकी सेवाओं के बारे में बताते हुए आज किस बात पर हमारे श्रोताओं को एजुकेट करेंगे, प्लीज बताएं।
10: जी जतिन भाई, मेरा मैसेज हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, चाहे कर्जा वो छोटा है या कर्जा ज़्यादा, अपना पैसा इंटरेस्ट में ज़ाया होने से आप बचा सकते हैं। उसके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर है 416-671-0577, 416-671-0577 पे कॉल करके चाहे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, कुछ आपने पे नहीं करना, चाहे एक दफ़ा आएँ, 10 बार आएँ, इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो अपना केस दें, अदरवाइज कोई अप्लीकेशन नहीं है। कर्जा चाहे आप पे क्रेडिट कार्ड्स का है, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, पर्सनल लोन्स हैं, पे डे लोन्स हैं या बिजनेस के लोन हैं या इनकम टैक्स का मामला है CRA के साथ पर्सनल या बिजनेस का GST आउटस्टैंडिंग है, पेरोल आउटस्टैंडिंग है, पे सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है या हेल्थ केयर सिविल लोन लिया था पे नहीं कर सके वापस, या कोई कार ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस किया था पेमेंट नहीं कर सके उठा के ले गए या पेमेंट नहीं कर सकते वापस करना चाहते हैं, या प्री कंस्ट्रक्शन कंडो या कोई घर बुक किए थे आपने जो जिसकी आप क्लोजिंग नहीं कर सके और बिल्डर आपके पीछे आ रहा है, तो ये सारे कर्जे आपके सेटल हो सकते हैं। उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नंबर है 416-671-0577। मेरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम रिलीफ मिल सके वो क्लाइंट को दिलवाऊं और बाकी छोटे छोटे किस्तों में वो जो इजीली अफोर्ड कर सकें वो पेमेंट करें। इसलिए अगर आप कोई इस किस्म की सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो आप इसको डिले ना करें, इग्नोर ना करें, कॉल करें 416-671-0577 और कोशिश करें कि ऑन टाइम पेमेंट करते हुए मेरे पास आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आप पेमेंट मिस कर देंगे, क्रेडिट ख़राब होगा तो फिर आपके लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपका डेट सेटल ज़रूर कर देंगे, लेकिन शायद क्रेडिट रीबिल्ड करने में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। और आपके एसेट चाहे आपके नाम पे घर हैं, गाड़ियां हैं, RESP बिजनेसेस, इन सारी चीज़ों को हम लीगल तरीके से सेव करते हुए आपको डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं। अगर आप पे कर्जा है, नंबर 416-671-0577 पे कॉल करके समझा ले सकते हैं। एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूँगा तो मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे वादा करूँगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा, और अगर इसमें आपका क्रेडिट ख़राब होता है या आर्ली ख़राब हो चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्रेडिट को दोबारा रीबिल्ड किया जा सकता है। हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में और क्रेडिट आपका बहुत जल्द रीबिल्ड हो सकता है। अगर नंबर है 416-671-0577। अगर लोकेशन पे विजिट करना चाहें तो स्कारबरो में है मार्क मेंडालिसबर्ग के पास, इटोबिको में हेड ऑफिस है किपलिंग रेक्सेल के पास, और ब्रैम्पटन में है ब्रैम्बली बोवेड के पास। नंबर फिर से बता देता हूँ 416-671-0577 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी जतन भाई।
0: सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिंदर भाइयों, अब आपकी बारी, जरूर कॉल करें 416-671-0577, 416-671-0577 टोल फ्री नंबर 1-855-671-0577, और वेबसाइट विजिट कीजिएगा aldersolutions.ca। सिद्दीक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रेड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बिंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50-7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरु लक्ष्मी.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਮਸਤ ਸੀ ਪਰ ਟੋਯੋਟਾ ਟਕੋਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਰੈੱਡ ਟੈਕ ਡੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਕੋਮਾ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਆਈਫੋਰਸ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਰੈੱਡ ਟੈਕ ਡੇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ ਲੀਜ਼ ਕਰੋ 2026 ਟਕੋਮਾ 4x4 ਡਬਲ ਕੈਬ SR5 $114 ਵੀਕਲੀ ਤੋਂ 36 ਮੰਥਸ ਲਈ 4.69% ਤੇ $4900 ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ shoptoyota.ca ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੋਯੋਟਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਓ
4: प्रतिष्ठा परंपरा और अनुशासन इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर एडवर्टाइजिंग इंटरव्यूज टॉक शोज इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545
5: हाँ जी मैं भाइयों जी द वॉइस और हम यहाँ के दोस्त जतीन आइए नजर करते हैं अराउंड द इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और वेनेजुएला की राष्ट्रपति के बीच अहम तेल समझौता। वैश्विक ऊर्जा संकट और ईरान युद्ध के चलते तेल सप्लाई में आई बाधाओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर बड़ी चर्चा हुई जिससे वेनेजुएला अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया है। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में लोकसभा सीटों के पुनर्गठन के लिए परिसीमन बिल पेश करने की योजना बना रही है। इस बार सरकार ने बिल लाने से पहले विपक्ष और क्षेत्रीय दलों जैसे टीएमसी डीएमके को विश्वास में लेने के लिए बातचीत शुरू कर दी है ताकि संसद में टकराव से बचा जा सके। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सभा यूएसटीआर ने एक नया प्रस्ताव रखा है जिसके तहत जबरन श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर से बने सामानों को रोकने के नाम पर भारत चीन और जापान समेत 60 देशों से आने वाले सामानों पर 10-12% का अतिरिक्त आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगाने की तैयारी की जा रही है। इससे वैश्विक व्यापार में नया तनाव शुरू हो गया है। बिंदर भाइयों एक और नजर करें तो राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। कांग्रेस ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने भी राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कई बड़े चेहरे को मिला मौका। सतीश पुनिया राजस्थान से बनेंगे उम्मीदवार। और राजकीय गलियारों में कहा जाता है कि शिवसेना की तरह टूट रही है ममता जी की टीएमसी। अंदर की कहानी अलग अलग तरीके से बताई जा रही है लेकिन ममता जी के लिए टीएमसी को संभालना मुश्किल हो रहा है, ये एक हकीकत है। ये थी अराउंड द इंडिया की बात। हम हैं आपके दोस्त जतीन। डिटेल जानकारी weeklyvoice.com पर।

0: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
1: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
2: हाँ जी मित्र भाइयों, आप जानते ही होंगे कि जून का महीना रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट के लिए एनिवर्सरी मंथ है और इसी एनिवर्सरी मंथ पर बेहतरीन प्रमोशंस आपके लिए। रेडियो वॉइस भी होगा लाइव ऑन लोकेशन दिस फ्राइडे, जरूर पहुंचिएगा 5200 डिक्सी रोड इन मिसिसागा। वेबसाइट भी विजिट करें रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट .ca। रिट्ज फर्नीचर्स एनिवर्सरी मंथ, जरूर बेनिफिट लीजिएगा। ये रेडियो वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।
3: घर कहीं भी लेना

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
8: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
9: Another Don Clean with the Don Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
12: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.
13: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम में आपके दोस्त यतीन. आइए नजर करते हैं अराउंड द बॉलीवुड. रणवीर सिंह पर लगा बैन हटा, डॉन 3 विवाद शांत हो गया. फिल्म फेडरेशन ने अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ जारी किया गया अनौपचारिक बॉयकॉट का फैसला वापस ले लिया है. रणवीर द्वारा कानूनी नोटिस भेजे जाने और कंगना रनौत सहित कई बड़े सितारों के उनके समर्थन में आने के बाद फेडरेशन ने कदम पीछे खींच लिए. रणवीर पर डॉन 3 को एन वक्त पर छोड़ने का आरोप था. आमिर खान की तीसरी शादी की चर्चाएं तेज. बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 61 साल के आमिर खान अगले महीने अपनी कथित गर्लफ्रेंड गौरी के साथ तीसरी बार शादी के बंधन में बंध सकते हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया पर गॉसिप का बाजार गर्म कर दिया है. रामचरण और जानवी कपूर की पैदी फिल्म आज सिनेमा घरों में. बूची बाबू सना द्वारा निर्देशित और रामचरण जानवी कपूर स्टारर स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पैदी आज पैन इंडिया स्तर पर हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज हो गई है. 1980 के दशक के ग्रामीण बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी क्रेज है. अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर कल होगी रिलीज. बॉबी देओल का क्रूर लुक दिखाई दिया. अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी डार्क क्राइम थ्रिलर फिल्म बंदर सिनेमा घरों में कल आएगी। फिल्म में बॉबी देओल एक ढलते हुए टीवी स्टार समर के रोल में है, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड द्वारा लगाए गए झूठे आरोप के बाद एक क्रूर जेल में फंस जाता है। वहीं पर क्या होता है, इसके लिए देखनी होगी फिल्म। पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ी शाहिद कपूर और कृति सेनन एक बार फिर साथ नजर आएंगे। दोनों ने एक मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड के लिए नए स्टाइलिश कैंपेन के लिए हाथ मिलाया है, जिसके फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और फिल्म बजरंगी भाईजान में छोटी सी मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा ने अपने जन्मदिन की तस्वीरें शेयर की। उनका बदला हुआ और बेहद मैच्योर लुक देखकर फैंस हैरान है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें ट्रेंड कर रही है। हाँ जीविंदर भाइयों, ये थी बॉलीवुड की खबरें अराउंड द बॉलीवुड। एंटरटेनमेंट की हर खबर weeklyvoice.com पर।

0: हाँ जी मिंद्र भाई, रेड वॉइस और हम आपके दोस्त जतीन आपके लिए रेड वॉइस फिर से शुरू कर रहा है अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट। बिंद्र भाइयों, देना होगा आपको जवाब। आप जीत सकते हैं फैमिली पास या फिर सिंगल पास अफ्रीकन लायन सफारीज के। आइए आपको बताता हूँ आज का सवाल। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, अफ्रीकन लायन सफारी कहाँ पर है, क्या एड्रेस जानते हैं आप? अगर जानते हैं तो हमें कीजिए ईमेल contest@weeklyvoice.com। आप जीत सकते हैं अफ्रीकन लायन सफारीज के पासिस। उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
2: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
3: सस्ते

0: Meet Rohit Dayasman at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
5: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
5: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, स्वीट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।
6: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर।
7: एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।

हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन, आइए करते हैं जिंदगी की बात। एक मूर्तिकार अपनी कार्यशाला में एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना रहा था। तभी वहां से गांव का एक ज्योतिष गुजरा। ज्योतिषी ने मूर्तिकार के हाथों को देखा और अपनी विद्या का रौब झाड़ते हुए कहा, अरे भाई, तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे हाथों की लकीरें कहती है कि तुम कभी एक अमीर या बेहद मशहूर कलाकार नहीं बन पाओगे। तुम्हारे भाग्य में केवल साधारण जीवन ही लिखा है। मूर्तिकार मुस्कुराया। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई, पत्थर पर एक जोरदार चोट की और बोला, पंडित जी, ये हाथ की लकीरें तो बस चमड़ी की सिलावटें हैं। भाग्य वो नहीं जो ये लकीरें बताती है, भाग्य वो है जो मैं इस छेनी और हथौड़ी की मार से इस पत्थर पर लिख रहा हूं। मैं इस पत्थर को तोड़ नहीं रहा हूं, इसमें से मूर्ति बनाकर मेरा भविष्य लिख रहा हूं। मूर्तिकार ने ज्योतिषी की बात पर ध्यान न देकर अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ ही सालों में उनकी बनाई मूर्तियां इतनी मशहूर हुई कि देश विदेश से लोग उन्हें खरीदने आने लगे। उसने साबित कर दिया कि किस्मत के भरोसे बैठने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। कहते हैं ना बहनों भाइयों, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलाकर गुले गुलजार होता है। हाँ जी, अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना होगा। जैसे एक बीज मिट्टी में खुद को मिटाकर ही एक सुंदर फूल का पौधा बनता है। ये थी जिंदगी की बात। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

And here we meet again on the day जहाँ DVP और Gardner Highways के bumper to bumper traffic में regular सफर करने वालों के लिए looks like कि ये गर्मा गर्म happy news है। Our premier and mayor ने मिल मिलकर एक new deal का फोड़ दिया है जग कि fall 2027 से Ontario सरकार formally इन दोनों highways को upload कर लेगी। बोले तो मालिक भी वही और जिम्मेदार भी वही होगी। Ford said with quite a dashen कि इन highways को ना तोड़ेंगे ना कभी इन पर टोल लगाएंगे। साथ ही gridlock कम करने और इनके safe and reliable करने हेतु city को काफ़ी सारे million dollars का fund भी दिया कि भाई तब तक मेंटेन करो जब तक ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता। दावा है ये कि सफ़र ऑन दीज हाईवेज पर होगा बेटर। मेयर तो खैर फूली नहीं समा रही होंगी विद दिस यू नो ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के इवेंट। वेल ऊपर वाला इन दिस इवेंट इज Ontario सरकार फॉर श्योर फॉर हर। पर मेरा आपका जाने दें इनका सपना मनी मनी तो डेफिनेटली पूरा हुआ लगता है। सो ऑन दिस सड़क की किस्मत क्या सच में बदलेगी विद दैट बदला हुआ मालिक वाली प्रश्न भरी नोट। दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर से इनकी पैसा इन्वॉल्व है इन क्रोर्स। कह रहे हैं हाईवे होंगे विदाउट टोल्स। सवाल पर यह भी है कि ग्रिडलॉक स्पीड और सरकारी फाइलों की स्पीड में फासले क्या होंगे कम क्या ना होंगे इनमें कोई झोल वोल।

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 to $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टर। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट वैल्यूएशन एट 4168437600।
0: My property, my choice. My Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
6: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

Fresh Breeze New Release on CMR at 5 PM. CMR 101.3 FM है ये फिल्मी नुक्कड़ सुन रहे हैं आप विद स्वाति एंड पायस व्हेन योर स्टफली टाइम पर. ये टाइम एक फ्रेश प्लीज न्यू रिलीज का तो ताजा तरीन गाना जो रिलीज हुआ है आपको सुनवाने वाली हूँ. बहुत प्यारा सा है फ्रॉम अपकमिंग हीरोइज्म अगेंस्ट टेररिज्म वाली पेट्रियोटिक थ्रिलर ड्रामा से विच इज रिलीजिंग ऑन जून 12 जहाँ कंगना रनौत लीड रोल में भी हैं और को प्रोड्यूसर भी हैं. नाम है फिल्म का भारत भाग्य विधाता दी अनसीन हीरोज. एंड यस इट्स नॉट द सीक्वल ऑफ वो 2002 की भारत भाग्य विधाता जिसमें जयप्रदा थी, चंद्रचूड़ थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे. रिमेंबर ऐसे याद रखने लायक तो वो फिल्म नहीं थी. होपफुली ये हो. ये अलग है. इट इज़ बेस्ड ऑन 26/11 का टेरर अटैक जहाँ हॉस्पिटल में जो भी नर्सेज हैं वो कैसे पेशेंट्स को सेव करती हैं अपनी जान की परवाह करे बिना ड्यूटी को और देश को ऊपर रखते हुए. अनसंग हीरोज गाना जो मैं सुनवाने वाली हूँ वो उसी स्पिरिट को ध्यान में रखकर लिखा भी है, बनाया भी है. दैट सेज नब्स नब्स चलती है, सांस सांस पलती है. यानी एज एवरी पल्स मार्चेज ऑन एवरी ब्रेथ एक नया पल बुनती है, बनाती है. अच्छा लिखा है मनोज तपाड़िया ने. पोएटिक है, फिलोसफिकल है एंड यू नो वो द फील गुड वाली वाइब वाला है. म्यूजिक इज बाय अमन पंत. मिनिमलिस्टिक है, बहुत लाउड नहीं है, ऑर्गेनिक साउंड्स के साथ में जैसे होता है. सॉफ्ट एकूस्टिक गिटार्स, ऑम्बियन कीज जिससे जो श्रेया के वोकल्स हैं ना वो और सेंटर स्टेज ले पा रहे हैं. हालांकि आप कहोगे भाई उनके वोकल्स को कहाँ सेंटर स्टेज की ज़रूरत, वो तो वैसे ही ले लेते हैं. सच तो है लेकिन यू नो श्रेया की बात हम करें तो डिफरेंट ऑक्टेव्स में वो जिस तरीके से ट्रांजिशन कर लेती हैं स्मूथली, सदा हुआ सुर जिससे होता है उनका, इसमें भी बहुत आपको पता चलेगा कि फ्रॉम सॉफ्ट विस्परिंग टू द सोरिंग होपफुल हाई टाइप जो होती है फील वो आपको मिलेगी. जेंटल थेरापेटिक वाइब परफेक्टली मैचेस फिल्म्स ट्राइब. तो देखते हैं ये आपको कैसा लगता है सुनने में. गाना ओवरऑल इज वेरी सोलफुल एंड नाइस ट्रिब्यूट टू ड्यूटी रेजिलियंस एंड यस हम सब की लाइफ. इट्स नब्स नब्स फ्रॉम भारत भाग्य विधाता.

हर पल का जश्न मनाओ, ये बात तो सही है, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी छोटी सी है, कब खो जाएगी, कब रुक जाएगी, कब सो जाएगी, क्या मालूम, है ना। तो भाई जो भी रूठे हैं उन्हें प्यार से मना लो, आखिर अपने ही है, पराई थोड़ी जैसे कि जिंदगी। इनफैक्ट हर उस रूठे को मना लीजिए जो अपना है, अपना ना होके भी अपना सा लगता है।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. अब फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%. साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट हॉट कैशबैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी अप टू $1,500. है ना आइसिंग ऑन द टॉप. कॉल अमित खुराना एट 647-341-2785
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, 104 in Brampton, 647-760-2779,
4: 647-760-2779.
5: Let's turn it up.
6: Let's kick it up.
7: Let's shake it up.
8: Get it up. Let's bounce it up.
9: Off the beat.
10: Off the beat.
11: It's Puppy Time.

0: ऑल राइट, आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़ स्वाति और पायस्विनी के साथ ऑन CMR 101.3 FM और वीकेंड है बस आ ही गया, तो सोचा आपकी बात करा दी जाए उनसे जो वीकेंड पर खास लेके आते हैं आपके लिए कुछ सुपर डील्स। सुपर इतनी होती हैं कि जब मैं सुनती हूँ तो कहते हैं ना मुंह खुला और आँख फटी वैसे रह जाते कि इतनी अच्छी डील्स कहाँ मिलती हैं। व्हेन इट कम्स टू आईज, यहाँ पे आप आईज टेस्ट करा सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे गॉगल्स मिल सकते हैं ब्रांडेड बहुत अच्छी डील में, अच्छे अच्छे चश्मे बनवा सकते हैं बहुत अच्छी डील में, जिस जैसे भी बनवाएं आप, कोटिंग चाहिए, प्रोग्रेसिव लेंसेज चाहिए, ऐसे वैसे आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। इस हफ्ते क्या है वो उनसे पूछ लेते हैं। राजन जी वेलकम।
1: थैंक यू सो मच स्वाति जी, सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग। एंड स्पेक्स एक्सप्रेस पर इस वीकेंड पे कौन सी डील एक्सप्रेस है वो बताएं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको पता है जैसे वीकेंड आ रहा है, बड़ा अच्छा ब्राइट हमारा दिख रहे हैं, कैसे सनी डेज चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए बढ़िया सनग्लासेस ब्रांडेड वाले ताकि आपकी आईज को प्रोटेक्शन मिले, तो आप पहुंच जाए स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर। हाई एंड ब्रांडेड सनग्लासेस जिसमें टॉम फोर्ड के, टिफनी के, ब्लेंसियागा के, साथ के साथ वर्साची के, बर्बरी के, प्राडा के, ये सभी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस के ऊपर दोस्तों आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये हमारे पास लेटेस्ट 2026 के ऑटम कलेक्शन, समर कलेक्शन जो भी है, सब लेटेस्ट मॉडल हमारे पास पहुंच चुके हुए हैं। ऐसे ही जिनको ब्रांडेड सनग्लासेस में अरमानी के चाहिए, माइकल कोर्स के चाहिए, केट स्पेड के, या फिर मार्क जेकब के, या फिर कोच के, ये सभी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस के ऊपर दोस्तों आपको आज फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है, यानी कि हाफ प्राइस के ऊपर। और स्वाति जी एक चीज मैं रिपीट कर दूं कि ये फ्लैट है, ये अप टू नहीं है। कई बार हमें होता है कि हम जाएंगे तो वहां पे शायद 10% ही मिलेगा क्योंकि अप टू बोला था, ये अप टू नहीं है, ये फ्लैट 50% ऑफ है। और इससे भी बढ़िया डील अगर आपको दोस्तों कैल्विन क्लाइन के फ्रेम चाहिए या सनग्लासेस, या फिर आपको टॉमी हिलफिगर के फ्रेम चाहिए या सनग्लासेस, तो फ्लैट 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है जी। ये अमेजिंग अमेजिंग डील्स है, इनको मिस मत करें। और जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है, डॉक्टर हमारे पास आज थर्सडे हमारी सैंडलवुड एंड क्रेडिट व्यू लोकेशन यहाँ पर तकरीबन 6 बजे तक हैं। अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल फ्राइडे और परसों सैटरडे दोनों दिन हमारे पास हमारी जो रेजोल्यूशन ड्राइव वाली लोकेशन है जी, वहां पर डॉक्टर अवेलेबल हैं। और स्वाति जी बहुत सारे हमारे लिसनर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम वीकेंड के ऊपर बिजी हैं, तो हमें वीकडेज में आप एग्जाम अरेंज करके दो। तो उनके लिए हमने स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन दोनों लोकेशन के ऊपर शाम को हमने डॉक्टर रखा हुआ है जी। आप दोनों लोकेशन में कहीं पर भी जाकर अपना आई एग्जाम करवा सकते हैं, पर बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप कॉल करके पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लेते हैं तो आपका टाइम सेव होगा। सो अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए या फिर कोई भी और जानकारी है तो एक ही नंबर 905-460-8888, 905-460-8888। इसके अलावा अब जैसे हमारा आजकल इवेंट्स है जी, बाहर हम बहुत निकलते हैं घूमने के लिए, कैनेडा डे भी आ रहा है या और बहुत सारे इवेंट आएंगे, तो जिन्होंने कॉन्टैक्ट लेंसेज डालते हैं तो उनके लिए स्पेशल स्पेशल डील है दोस्तों। अगर आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस डालते हो तो आपको पूरे साल की सप्लाई, हमारी स्पेशल रिबेट्स प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरे साल की सप्लाई सिर्फ $450 में मिल रही है। 360 pairs of contact lenses for just $450. अगर आपको ये डील भी चाहिए तो भी हमें कॉल करें 905-460-8888। और इसके अलावा जो हमारा वैल्यू पैकेज है स्वाति जी, वैल्यू पैकेज के लिए हमारे पास लोग बर्लिंगटन से, हैमिल्टन से, मार्कम से, स्कारब्रो से, दूर दूर से ट्रेवल करके आते हैं क्योंकि इस वैल्यू पैकेज में सेविंग बहुत होती है। तो सबसे पहले बता दें कि वैल्यू पैकेज में दोस्तों आपको ब्रांडेड फ्रेम मिलते हैं, लंडन फॉग, लिवाइस, रैंगलर, वैन ह्यूसन, एडी बावर, तकरीबन 700 से 800 फ्रेम हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर लगा है। आप कोई भी फ्रेम चूज कर लें, $300 की प्राइस का ये फ्रेम है जी। सो वैल्यू पैकेज में एक तो ये फ्रेम इंक्लूडेड है, दूसरा $100 की प्राइस के सिंगल विजन लेंसेज ये भी इंक्लूडेड है। तो कुल मिलाकर ये 400 का पैकेज है जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $129 में देते हैं जी, सिर्फ $129 में। और इतना ही नहीं, आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं, सभी की सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ। और स्वाति जी अगर कोई चाहिए कि दो पैर हो, एक मैं घर पे रखूं एक ऑफिस में, तो पहले पैर के ऊपर कोटिंग 50% ऑफ है और दूसरे पैर के ऊपर कोटिंग्स एब्सोल्युटली फ्री।
0: वाओ, वेरी नाइस।
1: तो ये अमेजिंग अमेजिंग डील्स हमारे लिसनर्स लेना चाहते हैं तो जरूर पहुंचे जी स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन, 410 एंड स्टील्स का लें या कैनेडी एंड स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। और नंबर एक बार फिर से 905-460-8888। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स हैं हम बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन वाले सनग्लासेस। कोई भी और इंक्वायरीज है आपकी दोस्तों, एक ही नंबर 905-460-8888 905-460-8888।
0: परफेक्ट,
1: थैंक
0: यू सो मच। तो भाई इस वीकेंड का फ़ायदा उठाएं और ज़रूर जाएं स्पेक्स एक्सप्रेस पर। मैं आपको फिर से नंबर दे देती हूँ 905-460-8888। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव एड्रेस है ब्रैम्पटन में और ये बिल्कुल 410 और स्टील्स में जो एक प्लाजा है वॉलमार्ट वाला, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पर जाएं बात करें और अच्छे से डिस्काउंट्स का इस वीकेंड पर फ़ायदा उठाएं। 905-460-8888।

और घड़ी हमें ये बता रही है इस वक्त कि 6 बजे का प्रोग्राम क्या है हमारा, वो आपको बता दें। 6 बजे आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं संजीव मनुचा जी। इन द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है, ये सेगमेंट बहुत खास होता है क्योंकि इस सेगमेंट में बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। एक तो उनकी आवाज़ अच्छी है, साथ में वो इतनी अच्छी सी कहानी सुनाते हैं और उस कहानी में एक मॉरल छुपा होता है जो हम सब के काम आने वाला होता है। तो कहानी की कहानी हो जाती है, सीख की सीख मिल जाती है। कहानी सुनिएगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उस कहानी में छुपे होंगे बहुत सारे आंसर्स टू द क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछने वाले हैं। उसके बाद वो जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने उसके ठीक ठीक जवाब दे दिए, जो कि आप दे पाओगे अगर आप कहानी ध्यान से सुनते हो, तो आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ इनाम। स्पॉन्सर्ड बाय संजीव मनुचा जी एंड माय रियल को ब्रोकरेज जो है उनकी उनकी तरफ से। तो अगर आपको जीतने हैं वो प्राइजेस, तो कहानी तो आप ध्यान से सुनते ही हैं तो पार्टिसिपेट भी कर लीजिएगा, क्या मालूम आज आप ही जीत जाएँ। स्टूडियो का नंबर पार्टिसिपेशन के लिए रहेगा 416-593-0055। ये नंबर हैंडी रखिएगा टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट जो कि उस सेगमेंट के बीच में हम करेंगे और आप उसमें बहुत कुछ जीत सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, 6 PM के अराउंड वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा, कहानी की कहानी और जीत की जीत।

0: चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: घर कहीं भी लेना

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
4: Another Don clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: Retro in Metro. Nukkad Classics.